0: सभा की शुरुआत करते हैं अनमोल विचार के साथ।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। कारगिल विजय दिवस हमें भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, त्याग और देशभक्ति की याद दिलाता है। हमारे वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की सीमाओं की रक्षा की और हमें ये सिखाया कि राष्ट्र सर्वोपरि है। आइए आज के दिन हम उनके बलिदान को नमन करें और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन कर सच्चे देशभक्त बनने का संकल्प लें।
0: अनमोल विचार के पश्चात अब आरंभ होता है हमारा भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। सबसे पहले सुनिए श्रोताओं मातृ वंदना।

श्रोताओं, श्यामल मित्रा के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज के भक्ति रस के कार्यक्रम प्रभाती वंदना का समय अब यहीं पर समाप्त होता है।

श्रोताओं, आज दिन में 11 बजे सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम मन की बात के तहत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को संबोधन, और 11:30 पर सुनिएगा इसी कार्यक्रम का संस्कृत अनुवाद। तो समय याद रखिए, आज दिन में 11 बजे कार्यक्रम होगा मन की बात।

0: मखमैले रंग का व किनारों पर गहरे भूरे रंग की पतली पट्टी बनी होती है। कल्ले की गांठों पर भूरे धब्बे बनते हैं जो कि गांठ को चारों ओर से घेर लेते हैं। बालियों के निचले डंटल पर मटमैले बादामी रंग के धब्बे बनते हैं तथा डंटल बालियों के भार से टूट जाते हैं। जहां तक इस रोग के प्रबंधन का सवाल है तो सबसे पहली बात आती है रोग प्रतिरोधी किस्मों की। ब्लास्ट रोग के लिए प्रतिरोधी किस्में हैं रासी, विकास, कृष्णहंसा, तुलसी, IR64, आदित्य आदि। यदि आप इनके बीजों का प्रयोग करें तो इस रोग से आप बच सकते हैं। बीजोपचार भी इसके लिए किया जा सकता है। बीजों का उपचार ट्राईसाइक्लोजॉल 1 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से करना चाहिए। फसल में कार्बनडाइजिम अथवा एडिफेनफस अथवा ट्राईसाइक्लोजॉल दवा को 600 मिलीग्राम दवा 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। रोगग्रस्त पौधों के अवशेषों को आपको खेत से बाहर कर देना चाहिए, इसे खेत में ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। किसान भाइयों, जहां तक इस रोग के आर्थिक हानि स्तर का सवाल है तो फुटान अवस्था में अगर 5 से 10% संक्रमण आपको दिखाई दे, बूटिंग अवस्था में पत्तियों का अगर 5 से 10% क्षेत्र संक्रमित हो जाए अथवा फूल आने की अवस्था में पत्ती का 5% क्षेत्र संक्रमित हो तो ऐसी स्थिति में आपको कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना होगा। अब बारी आती है तना विगलन रोग की। इस रोग के लक्षण रोपाई के 2 से 3 सप्ताह बाद तना तथा पर्णछत पर पानी की सतह के पास भूरे काले धब्बे के रूप में दिखाई पड़ते हैं जो कि फैलकर पूरे तने को घेर लेते हैं। रोगग्रस्त जो तना होता है वो गलकर गिर जाता है। इसके प्रबंधन के लिए खेत से पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था आपको करनी होगी तथा अधिक प्रकोप होने पर फसल पर 0.25% मैंकोजब दवा का छिड़काव करें। जैविक खाद के प्रयोग से भी रोग के प्रकोप में कमी लाई जा सकती है। जहां तक इस बीमारी के आर्थिक हानि स्तर का सवाल है तो फुटान अवस्था में 10% से अधिक प्रभावित पौधे, बूटिंग अवस्था में भी 10% से अधिक प्रभावित पौधे और फूल आने की अवस्था में अल्प से मध्यम यानी 10 से अधिक% जो पौधे हैं वो प्रभावित हैं, तब आपको कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं शीत ब्लाइट यानी पर्णछद अंगमारी की। इस रोग के प्रमुख लक्षण मुख्यतः पर्णछद पर पत्तियों पर उभरते हैं। पर्णछद पर पानी की सतह से ऊपर 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे हरे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जो कि भूरी या बैगनी किनारों से घिरे रहते हैं। बाद में ये धब्बे तने को चारों ओर से घेर लेते हैं। भयंकर प्रकोप के कारण दाना अच्छी तरह से नहीं बन पाता है। यदि रोग का प्रकोप पौधों की प्रारंभिक अवस्था में हो जाए तो पौधे गिर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। अधिक नम वातावरण में पौधों के प्रभावित भागों पर मटमैले सफ़ेद रंग के कवक जाल की परत देखी जा सकती है। इसके प्रबंधन के लिए फसल में नाइट्रोजन खादों की या तो कम मात्रा में प्रयोग करें या फिर देर से या 2 से 3 भागों में बांटकर प्रयोग करें। अगर फसल में जो बीमारी है वो 10% से अधिक लगती है यानी 10% से अधिक प्रभावित पौधे आपको दिखाई देते हैं विभिन्न अवस्थाओं में, तब आप कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। कीटनाशक दवाओं में कार्बनडाइजिम 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप पौधों पर छिड़क सकते हैं। अब बात करते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट या झुलसा रोग की। ये एक जीवाणु जनित रोग है। प्रभावित पत्तियों पर पीले या हल्के हरे रंग की लहरदार धारियां पत्ती के एक या दोनों किनारों के सिरों से प्रारंभ होकर नीचे की ओर नसों के समानांतर बढ़ती हैं तथा पत्तियां सूख जाती हैं। ये रोग पूरे पौधे पर फैलकर इसे सुखा सकता है। रोग का प्रकोप होने पर पौधे झुलसे हुए से प्रतीत होते हैं। अधिक नम स्थिति में रोग प्रभावित अंगों पर जीवाणु जल की बूंदें भी देखने को मिलती हैं। इस रोग के प्रबंधन के लिए फसल में नाइट्रोजन उर्वरकों की मात्रा में कमी करें अथवा इन उर्वरकों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बांटकर प्रयोग में लाएं। रोग प्रतिरोधी प्रजातियों को उगाएं तथा बीजों को एग्रोमाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 3 ग्राम तथा सेरोसॉन 1% के घोल में 8 घंटे तक भिगोकर सुखा लें और फिर बुआई करें। अगर आपको पौधों की विभिन्न अवस्था में 2 से 5% संक्रमण दिखाई देता है तब आप समझ सकते हैं कि आपको नियंत्रण उपाय करने हैं। हालांकि इसका नियंत्रण
1: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। अगला प्रसारण हमारी दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 5:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आज की हमारी चर्चा का विषय है धान में लगने वाले प्रमुख रोग व उनका नियंत्रण। सबसे पहले बात करते हैं ब्लास्ट रोग की। ये एक फफूंद जनित तथा भयंकर रोग है। रोगग्रसित पत्तियों पर छोटा नीला जलसिक्त धब्बा बनता है, जो कि आकार में बढ़कर कई सेंटीमीटर लंबा व लगभग 1 सेंटीमीटर चौड़ा व नाव की आकार का हो जाता है। इसके बीच का भाग

0: आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजीपी प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रदर्शनकारी के विरुद्ध पहले से पुलिस रिपोर्ट दर्ज है तो उसे वापस लिया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन वट एवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: वहीं सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बने शर्तों को तय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा थी, जबकि रोमानिया की 3 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा रही। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर पांचवा जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने एफआईएच यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने एफआईएच यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी रानी लक्ष्मी कल 27 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर जाएगा। जलयान 28 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कैमल बे आज सुबह 8 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा। वापसी आज ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी सेंटिनल कल 27 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर जाएगा। जलयान 28 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कालीघाट कल 27 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान कार निकोबार चावरा तेरेसा कचाल व ननकौड़ी होते हुए कैमल बे के लिए प्रस्थान करेगा। जलयान 30 तारीख को दोपहर 12 बजे कैमल बे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी हडबे आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा। जलयान आज ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप तथा 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रंगत आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप जाएगा और आज ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप तथा 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्टी टैलेंट आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप जाएगा और कल 27 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बम्बुका कल 27 तारीख को सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर जाएगा। जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल 27 तारीख को सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। वापसी कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी चंगा कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप जाएगा। वापसी कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज कल 27 तारीख को दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा। जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप तथा 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी स्टी टैलेंट कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप जाएगा और कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप तथा 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी पाराटांग कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा। वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। और एमवी जॉली बॉय कल 27 तारीख को शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप जाएगा और 28 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। ये था जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 6:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष इंद्रधनुष कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।

दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक है हिंदुस्तान। दोस्तों, अपने देश के प्रति प्रेम, गर्व और समर्पण की भावना हर दिल में जागृत होती है। भारत की एकता, अपनापन और देशभक्ति का यही जज्बा हर दिल को अपने वतन से और भी गहराई से जोड़ देता है।

दोस्तों, एकता, भाईचारे और मिलजुल कर रहने की भावना हर दिल में जागृत होती है। हम सब एक हैं और साथ मिलकर ही एक मजबूत और खुशहाल समाज का निर्माण कर सकते हैं।

दोस्तों, अपने देश के गौरव, समृद्ध संस्कृति और महान विरासत पर गर्व की भावना हर दिल में जागृत होती है। भारत की एकता, शांति, भाईचारे और सम्मान का संदेश हर भारतीय को अपने वतन से और भी गहराई से जोड़ देता है।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में

फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां, पूजा।

करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम। हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं होता। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी। हमलावर इस दीवार से टकरा कर वापस जाते रहे, जो 1962 में हुआ, वही सन 65 में और वही 71 में। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है, यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन

0: दोस्तों, अब लक्ष्मी इंद्रधनुष कार्यक्रम से चाहती है इजाजत। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंद्रधनुष, जिसे प्रस्तुत कर रही थी लक्ष्मी। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की 311वीं कड़ी। गायक कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और श्रीकांत पारगांवकर।

अंगद के मुख से कई रावणों के उपहास की कथाएं सुन रावण तिरस्कार भरे स्वर में बोला, मूर्ख वानर, मैं वही रावण हूं जिसकी भुजाओं का बल कैलाश पर्वत को ज्ञात है, जिसका पराक्रम स्वयं महादेव जानते हैं, जिसने अगणित बार अपने सिर काट और चढ़ाकर उनकी पूजा की थी, दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथियों के विशालकाय दांत मेरी छाती से टकराकर गाजर मूली की तरह टूट गए थे, मेरे चलने मात्र से पृथ्वी ऐसे डोलती है मानो भूकंप आ गया हो, मैं वही जगत प्रसिद्ध रावण हूं। क्या ये सब तूने अपने कानों से नहीं सुना, जो मुझे छोटा समझ एक मनुष्य की बड़ाई करता है? तू कितना अज्ञानी है अब मैं समझ गया। रावण के वचन सुन अंगद श्री राम की महिमा और अनंत शक्ति का बखान करते हुए कहते हैं, तू मूर्ख है जो श्री राम को साधारण मनुष्य, हनुमान को वानर, कामदेव को धनुर्धर, कल्प वृक्ष को एक सामान्य पेड़, गरुड़ को मात्र एक पक्षी और शेषनाग को एक मामूली सर्प समझता है। यदि तूने श्री राम से वैर मोल लिया तो ब्रह्मा और रुद्र भी तेरी रक्षा नहीं कर सकेंगे।

अभी आप रामचरितमानस गान की 311वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और श्रीकांत पारगांवकर तथा संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। सुनिए मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार जन सेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि द्वीपों के एकाध स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाओं के साथ गरज के साथ छींटे पड़ेंगे।

मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में ना जाएं। कल सुबह तक के मौसम के बारे में पूर्वानुमान है कि द्वीपों के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम देश रागनी और ठीक उसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में 7:30 पर आप आनंद ले पाएंगे कुछ फिल्मी गीतों का। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकारा होंगी अनुराधा। बाल जगत कार्यक्रम में सुबह 9 सुनिएगा विजय दिवस पर अनिशा कुजूर की वार्ता और APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर

कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में 7:30 पर आप आनंद ले पाएंगे कुछ फिल्मी गीतों का। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकारा होंगी अनुराधा। बाल जगत कार्यक्रम में सुबह 9 सुनिएगा विजय दिवस पर अनिशा कुजूर की वार्ता और APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर जानकारी आप सुनेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर पंडित जितेंद्र अभिषेकी का गायन प्रसारित किया जाएगा। लाइव फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो फरमाइश का आप आनंद ले पाएंगे सुबह 10:00। दिन में 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम मन की बात के तहत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को संबोधन और 11:30 पर सुनिएगा इसी कार्यक्रम का संस्कृत अनुवाद जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तेलुगु कार्यक्रम का समय रहेगा 12:00 जिसके तहत आप पुराने लोकप्रिय गीतों का आनंद ले पाएंगे। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे विजय कारगिल दिवस पर विशेष कार्यक्रम। 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकार होंगे नीना मेहता व राजेंद्र मेहता। 1:30 पर घर संसार कार्यक्रम के तहत आप विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर गुरप्रीत कौर की वार्ता के पश्चात मैनग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण दिवस, कारगिल विजय दिवस और राष्ट्रीय अभिभावक दिवस पर चर्चाएं सुन पाएंगे। 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होगी जबकि FM 100.9 MHz चैनल पर स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे जिसमें आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत लहरी। 3:00 एल्बम टाइम और 3:30 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा की शुरुआत होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ जिसमें कार निकोबार के सेंट पॉल्स चर्च के परका गांव के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत भक्ति गीत सुनवाए जाएंगे। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 20वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी शाम 4:30 पर। बाहरों की शाम कार्यक्रम आप सुनेंगे 4:45 पर। शाम 5:00 होगा तमिल कार्यक्रम जिसके तहत पुराने फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। बांग्ला कार्यक्रम में शाम 5:30 पर बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा। महिलाओं के लिए व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम संगीत संगनी का समय रहेगा शाम 6:00। 6:30 पर धरती के गीत कार्यक्रम में गोवा के लोकगीत सुनवाए जाएंगे। 7:20 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युववाणी में शाम 7:30 पर कारगिल विजय दिवस पर होगा विशेष कार्यक्रम शौर्य की अमर गाथा। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 8:00 और 8:30 पर सुनिएगा रोजगार समाचार व गौरवगान। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम रेडियो स्कोप और रात्रि 10:00 सुनिएगा रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के तहत विदुषी वर्षा अग्रवाल का संतूर वादन जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जबकि रात्रि 10:00 विविध भारती मुंबई से आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: कृतज्ञतामपि प्रकटितवान्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् राष्ट्रसेवा तस्य जीवनस्य सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति, सहैव जीवनपर्यन्तं तस्यै समर्पितः भविष्यतीति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः केन्द्रीयमन्त्रिपरिषदः धर्मेन्द्रप्रदानस्य त्यागपत्रं तत्क्षणप्रभावेण स्वीकृतवती। धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं केन्द्रीयमन्त्री प्रह्लादजोशी नूतनशिक्षामन्त्री भविष्यति। वर्तमानदायित्वेन सह शिक्षामन्त्रालयस्य दायित्वमपि तस्मै समर्पितम्।
1: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड आई विल विथ फुल स्ट्रेंथ आई विल ट्राई टू वर्क विथ ऑल ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्ट।
0: राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया रोमानिया देशानाम् आधिकारिक यात्रां सम्पन्नं कृत्वा अद्य प्रातः नवदिल्लीं प्रत्यागतवती। अस्यां यात्रायाम् अनेकानि ऐतिहासिक सोपानानि स्थापितानि, तेषु कस्यापि भारतीय राष्ट्रपतेः मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया देशयोः प्रथमा आधिकारिक यात्रा, सहैव त्रिदशकानन्तरं रोमानिया देशस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा सम्मिलिता अस्ति। समग्र यात्रावधौ राष्ट्रपति पदासीना मुर्मुः विभिन्न देशानां राष्ट्राध्यक्षैः सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ताः अकरोत्, व्यापार मञ्चान् सम्बोधितवती तथा भारतीय प्रवासी समुदायस्य सदस्यैः सह संवादमपि अकरोत्। प्रशासनं श्वः लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतत् विधेयकं सोमवासरस्य लोकसभा कार्यसूचौ समाविष्टम्। एतेन सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमः 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनं भविष्यति। केन्द्रीयमन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः एतत् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। उल्लेखनीयमस्ति यत् गतशुक्रवासरे केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्गे परीक्षासु च अनुचितसाधनप्रयोगप्रकरणेषु द्रुतन्यायालयानां स्थापनाय दोषिषु च कठोरतरदण्डविधानं सुनिश्चेतुं प्रारूपविधेयकम् अनुमोदितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य पूर्वाह्ने 11 स्वीय मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिभिः साकं विचार विनिमयं करिष्यति। मन की बात इति मासिक कार्यक्रमस्य इदं 37-100 संस्करणं भविता। अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः प्रसारयिष्यते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी दूरदर्शनं प्रधानमन्त्री कार्यालयः सूचना प्रसारण मन्त्रालयः इत्येतेषां यूट्यूब वाहिनीष्वपि द्रष्टुं शक्यते इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं 4:30 दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन 26-2000 विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रमस्य सहभागिभिः सह संवादं साधयिष्यति। 20-20 पुरुष क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन त्रिस्पर्धात्मक श्रृंखलायाः द्वितीय क्रीडायां जिम्बाब्वे दलं 90 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार।
3: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 MHz पर यह है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। सुबह के 7 बजे हैं जन सूचनाएं।

इसके तहत पहले सुनिए मौसम की जानकारी। आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 1.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 84% तथा न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31.5 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:06 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा

शाम 5:46। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा विमान 2937 आज दिन में 11 बजे श्रीविजयपुरम पहुंचेगा और विमान संख्या 2936 श्रीविजयपुरम से दिल्ली के लिए वापसी उड़ान भरेगा दिन में 11:40 पर। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। अब सुनिए एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश का एक ऐसा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। आइए श्रोताओं, अब एक नज़र डालते हैं आज के कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों पर। सुबह 7:30 पर सुनिएगा गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के तहत कुछ फिल्मी गीत। बाल जगत कार्यक्रम में सुबह 9:00 सुनिएगा विजय दिवस पर अनिशा कुजूर की वार्ता और APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर जानकारी। लाइव फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो फरमाइश का आप आनंद ले पाएंगे सुबह 10:00। दिन में 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम मन की बात के तहत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को संबोधन और 11:30 पर सुनिएगा इसी कार्यक्रम का संस्कृत अनुवाद जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जन सूचनाएं समाप्त हुई।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। प्रहलाद जोशी ने संभाला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार। राष्ट्रपति ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के 136वें एपिसोड में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कारगिल विजय दिवस पर उपराज्यपाल ने वीर जवानों के साहस, बलिदान और राष्ट्र सेवा को किया नमन। राष्ट्र आज अपने वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दे रहा है। और कार्बाइन स्कोप बीच पर म्यूजिकल हार्मनी बाय नाइट सांस्कृतिक संध्या का हुआ शुभारंभ। सुबह के समाचारों के साथ मैं तरन्नुम।

मोहम्मद। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। यह जिम्मेदारी उन्हें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सौंपी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के साथ साथ अपने मौजूदा मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी निभाते रहेंगे। प्रहलाद जोशी वर्तमान में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। अंडमान एवं निकोबार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कल राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय श्री विजयपुरम में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को बाल अधिकार, बाल संरक्षण कानून और निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी देना था। कार्यक्रम में परिवार न्यायालय पोर्ट ब्लेयर के न्यायाधीश लीलामय मंडल तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय दत्ता और जयंत मुखर्जी ने पॉक्सो अधिनियम, बाल सुरक्षा और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पर जानकारी दी। वक्ताओं ने बच्चों के अधिकार, साइबर सुरक्षा, बाल विवाह के दुष्परिणाम, अपराध की सूचना देने के महत्व तथा कानूनी संरक्षण के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक किया। इसके साथ ही नालसा की योजनाओं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाओं, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और नालसा राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन 1500 की भी जानकारी दी गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है कारगिल दिवस और सांस्कृतिक संध्या। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्र 27वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डीके जोशी ने द्वीपवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों के अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और सर्वोच्च बलिदान को याद करने का दिन है। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा में जवानों की निस्वार्थ सेवा और समर्पण हर भारतीय को प्रेरणा देता है तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करता है। उपराज्यपाल ने लोगों से कारगिल युद्ध के वीर नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके बलिदान को नमन करने की अपील की। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में एक और कदम उठाया गया है। डॉक्टर आरपी अस्पताल मायाबंदर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टूगापुर में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी HMIS शुरू कर दी गई है। इससे दोनों स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को अधिक सुगम और प्रभावी सेवाएं मिल सकेंगी। डॉक्टर आरपी अस्पताल मायाबंदर को पिछले वर्ष नेक्स्ट जेन हॉस्पिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया था, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टूगापुर को 24 जुलाई को ई सुश्रुत लाइट HMIS से जोड़ा गया। टूगापुर में इस प्रणाली का औपचारिक शुभारंभ डॉक्टर आरपी अस्पताल की प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शैलजा पी तथा दोनों स्वास्थ्य संस्थानों के चिकित्सकों की मौजूदगी में हुआ। ई सुश्रुत लाइट HMIS के माध्यम से डिजिटल OPD पंजीकरण और ई प्रिस्क्रिप्शन की सुविधा मिलेगी। इससे मरीजों का पंजीकरण आसान होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जा सकेंगे, कागजी कार्रवाई कम होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता तथा दक्षता में सुधार होगा। डॉक्टर आरपी अस्पताल मायाबंदर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टूगापुर आने वाले लोगों से अपना आधार कार्ड या से जुड़े मोबाइल नंबर साथ लाने की सलाह दी गई है ताकि OPD पंजीकरण जल्दी हो सके और

0: आभा ऐप के माध्यम से डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड आसानी से प्राप्त किए जा सके, यह ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किए जा सकते हैं। लिटिल अंडमान के पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामकृष्णपुरम में कल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पहचान एवं चिकित्सा मूल्यांकन शिविर आयोजित किया गया। शिविर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामकृष्णपुरम की डॉक्टर फरहीन और उनकी टीम ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। शिविर का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान, उनकी शैक्षिक एवं पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं का आंकलन, पहले से चिन्हित बच्चों की प्रगति की समीक्षा तथा बच्चों और उनके अभिभावकों को आवश्यक परामर्श प्रदान करना था। शिविर में 16 विद्यार्थियों ने अपने अभिभावकों के साथ भाग लिया। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद की ओर से पर्यटन विभाग तथा कला एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या म्यूजिकल हार्मनी बाय नाइट का शुभारंभ कल कार्बेंस्को बीच पर हुआ। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करना, पर्यटकों के सांस्कृतिक अनुभव को समृद्ध बनाना और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देना था। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम आज भी शाम 5 बजे से 7 बजे तक कार्बेंस्को बीच पर जारी रहेगा। आम जनता और पर्यटकों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई है। खेल एवं युवा मामले निदेशालय, शिक्षा निदेशालय और पर्यटन निदेशालय के सहयोग से कार्बाइनस्कोप समुद्र तट पर मॉनसून बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट के 2रे संस्करण का आयोजन कर रहा है। ओपन पुरुष और ओपन महिला श्रेणियों में आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट का उद्देश्य बीच वॉलीबॉल को बढ़ावा देना, खेल भावना को प्रोत्साहित करना और द्वीप समूह के वॉलीबॉल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। टूर्नामेंट के पहले दिन पुरुष और महिला श्रेणियों को मिलाकर कुल 26 मैच खेले गए। इस टूर्नामेंट में कुल 39 टीमें भाग ले रही हैं। सेमीफाइनल मैच आज दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, जिसके बाद फाइनल मैच खेले जाएंगे। लिटिल अंडमान में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामुदायिक विकास खंड लिटिल अंडमान की ओर से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत यह कार्यक्रम पंचायती समिति सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव और ब्लॉक प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया। खंड विकास अधिकारी बेल्थाजर ने स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ गांवों के निर्माण के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रहलाद जोशी ने संभाला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार, राष्ट्रपति ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में 136वें एपिसोड में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कारगिल विजय दिवस पर उपराज्यपाल ने वीर जवानों के साहस, बलिदान और राष्ट्र सेवा को किया नमन। और कार्बाइनस्कोप बीच पर म्यूजिकल हार्मनी बाय नाइट सांस्कृतिक संध्या का हुआ शुभारंभ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम।

गूंज उठी है आज दिशाओं में भारत माँ की बाणी, कण कण में गाती है देखो वीर पुत्रों की कहानी। नमस्कार, सुस्वागतम देशरागनी कार्यक्रम में। आज मैं हूँ आपके साथ सोनिया। श्रोताओं, अपने देश और उसकी संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम व समर्पण की भावना ही सच्ची देशभक्ति है। एक ऐसा ही देश प्रेम और देशभक्ति से ओतप्रोत गीत कर रहे हैं आपकी नज़र।

श्रोताओं, जब भी देश की रक्षा की बात हो तो सबसे पहले हमारे जहन में देश के वे वीर सपूत याद आते हैं जिन्होंने देश की खातिर हंसते हंसते अपना सर्वस्व न्यौछावर कर गए और पीछे छोड़ गए अपने शौर्य एवं पराक्रम की गाथाएं।

0: देश रागिनी श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश रागिनी। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। सुबह के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

कारगिल की बर्फीली चोटियों पर जिन्होंने अपना लहू बहाया, तिरंगे की शान की खातिर जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उन अमर शहीदों के चरणों में शीश झुकाकर नमन है आज, जिनकी वीरता और शौर्य पर पूरे हिंदुस्तान को है नाज़।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास है। गर्व से भरा ये दिन भारतीय सेना के शौर्य की कहानी कहता है। ये वो दिन है, ऐतिहासिक दिन, जब हमारे तिरंगे ने दुश्मन की हर नापाक साजिश को कुचलकर कारगिल की चोटियों पर अपने शान का परचम लहराया था। जी हाँ श्रोताओं, आज है कारगिल विजय दिवस। इसी दिन हमारे जाबाज सैनिकों ने विजय का परचम लहराया था।

साल 1999 जब पूरा देश आराम से सो रहा था, तब हमारे जाबांज जवान -10 डिग्री की जमा देने वाली ठंड में 18,000 फीट की ऊंचाई पर टाइगर हिल और तोलोलिंग जैसी दुर्गम चोटियों पर दुश्मन से लोहा ले रहे थे। ये युद्ध सिर्फ जमीन के टुकड़े को बचाने की नहीं थी, वो जंग थी भारत के स्वाभिमान की और भारत के गौरव की।

श्रोताओं, कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज कुमार, मेजर राजेश अधिकारी, ये सिर्फ नाम नहीं, ये वो मशाले हैं जो आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति का रास्ता दिखलाएंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा के वे शब्द आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं, या तो तिरंगा लहरा कर आऊँगा या तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, पर आऊँगा ज़रूर। ऐसे जाबाज सैनिकों को हमारा शत शत नमन है।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र और कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग अंडमान। श्रोताओं, कारगिल विजय दिवस केवल भारतीय सेना की सफलता नहीं बल्कि हमारे जवानों की बहादुरी, बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक है।

श्रोताओं, कारगिल विजय दिवस केवल उन सैनिकों का ही नहीं बल्कि उनके परिवारों की हिम्मत का भी प्रतीक है जिन्होंने देश प्रेम की खातिर अपनों को खोया। ये दिन साबित करता है कि जब बात देश की रक्षा की हो तो भारतीय सैनिकों का हौसला हिमालय से भी ऊंचा और मजबूत हो जाता है।

वतन की आबरू पर हम मिटना जानते हैं, दुश्मन की हर साजिश को कुचलना जानते हैं। मत ललकारो हमें ऐ देश के दुश्मनों, हम पहाड़ों का सीना चीर कर तिरंगा लहराना जानते हैं। इसी देशभक्ति भावना के साथ कार्यक्रम से आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।

0: calling अंडमान।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
0: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं?

0: भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: NEET UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
3: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
4: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक

0: और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
3: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने भी

0: दिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने CJPay के सभी 3 मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद CJPay ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी CJPay ने सरकार को सौंपा चार्टर। पेपर लीक मामलों की जाँच 2 महीने में होगी पूरी। वही नव भारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। 4th साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड, कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है। शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12,000 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। CJP withdraws agitation after government accepts its demands. Union Minister Prahlad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan. Government to introduce

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की फनकारा थी अनुराधा। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल जगत।

0: मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों और रेडियो सुन रहे सभी देशभक्त मेरे साथियों, आप सभी का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 26 जुलाई यानी कारगिल विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे प्यारे दोस्तों को। आज का दिन कैलेंडर की कोई आम तारीख नहीं है। आज का दिन वो दिन है जब हमारे देश के वीरों ने हिमालय की बर्फीली चोटियों पर अपने खून से शौर्य की नई कहानी लिखी थी। आज हवाओं में एक अलग ही गूंज है, तिरंगे के फहराने में एक अलग ही शान है। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, जो हवा के झोंकों से नहीं बल्कि हमारे सैनिकों की आखिरी सांसों से फहरता है। आज के खास सफर में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साल 1999 की उस ठंडी वादियों में आप सभी को ले चलूंगी, जहाँ हमारे भारतीय जवानों ने दुश्मनों के पसीने छुड़ा दिए थे। अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि यह सफर आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
1: अलवा

मेरे प्यारे दोस्तों, बात मई 1999 की है। कारगिल की पहाड़ियाँ, जहाँ तापमान -10 से -15 डिग्री होता है, इतनी ठंड कि खून भी जम जाए। ऐसे में हमारे पड़ोसी देश ने धोखे से हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया। दुश्मन ऊपर पहाड़ी पर बैठा था और हमारे जवान नीचे। जंग के मैदान में जो ऊपर होता है उसे हमेशा फायदा मिलता है, लेकिन दुश्मनों को यह नहीं पता था कि उनका सामना किससे हो रहा है। उनका सामना उस भारतीय सेना से था जिसके हौसले हिमालय से भी ऊंचे हैं। जब हमारी सेना को इस घुसपैठ का पता चला तो शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। गोलियों की बौछार और हमारे वीर जवानों की, उनका बस एक ही लक्ष्य था, दुश्मनों को खदेड़ना और अपनी चोटी पर तिरंगा लहराना।

कारगिल युद्ध की बात हो और हमारे सुपर हीरो का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? आप सभी टीवी में सुपर हीरो देखते हैं, लेकिन हमारे असली जिंदगी में सुपर हीरो वो हैं जो सरहद पर खड़े हैं। आपने कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सुना है दोस्तों? जब उन्होंने एक मुश्किल चोटी को जीत लिया तो उनका संदेश था, ये दिल मांगे मोर, यानी अभी तो और चोटियां जीतनी है। दुश्मनों की गोलियों की बौछार के बीच वह अपने साथियों को बचाते हुए आगे बढ़ते और शहादत को गले लगा लिया। और हम कैसे भूल सकते हैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे को? परमवीर चक्र से सम्मानित इस जाबाज ने दुश्मनों के बंकरों में घुसकर उन्हें तबाह कर दिया। बच्चों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हमारे देश के असली खून और पसीने की सच्चाई है। इन जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि आज आप और मैं चैन से अपने घरों में सो सके, अपने स्कूलों में पढ़ सके और खुली हवा में सांस ले सके। तो चलिए नन्हे दोस्तों, आपकी करवाते हैं मुलाकात अनीशा दीदी से और जानते हैं उनके विचार कारगिल विजय दिवस पर।

प्यारे दोस्तों, आओ मिलकर एक कहानी गाएं, कारगिल के वीर जवानों को श्रद्धा सुमन चढ़ाएं, जिनकी हिम्मत पर्वत जैसी, जिनका ऊंचा मान, उनके कारण आज सुरक्षित अपना हिंदुस्तान। नन्हे हाथों में आज तिरंगा, दिल में हो सम्मान, वीरों के बलिदान से ही ऊंचा है भारत का मान। पढ़ लिख कर तुम आगे बढ़ना, करना अच्छे काम, सच्चाई, सेवा और साहस से रोशन करना नाम। आओ बच्चों, आज सभी मिल यह संकल्प उठाए, अपने प्यारे भारत को हम सबसे श्रेष्ठ बनाएं। दोस्तों, पहले मैं आप सभी से छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। बच्चों बताइए, आपका सबसे बड़ा हीरो कौन है? कोई कहेगा क्रिकेटर, कोई फिल्म अभिनेता, कोई वैज्ञानिक, लेकिन क्या आपने कभी उन लोगों के बारे

में सोचा है, जो हमारे लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। वे हैं हमारे भारतीय सैनिक। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कारगिल युद्ध के दौरान क्या हुआ और हमारे वीर सैनिकों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज पूरा देश 26 जुलाई को गर्व और सम्मान के साथ कारगिल विजय दिवस मनाता है। बच्चों, सन 1999 की बात है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। दुश्मन हजारों फीट ऊंची चोटियों पर था, जबकि भारतीय सैनिकों को नीचे से सीधी खड़ी चढ़ाई करते हुए लड़ना था। तापमान कई बार 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। ऑक्सीजन की कमी, बर्फीली हवाएं और दुर्गम रास्ते इस युद्ध को और कठिन बना रहे थे। फिर भी हमारे सैनिक आगे बढ़ते रहे। उनके सामने केवल एक लक्ष्य था, भारत का तिरंगा हर हाल में ऊंचा रहना चाहिए। भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। भारतीय वायु सेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के माध्यम से सेना की सहायता की। देश भर के सैनिक कारगिल पहुंचे और दुश्मन को हर हाल में पीछे हटाने का संकल्प लिया। इसके बाद शुरू हुई वीरता की ऐसी गाथा जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। सबसे पहले तोलोलिंग की लड़ाई हुई। कई दिनों तक चले इस भीषण संघर्ष के बाद भारतीय सैनिकों ने इस चोटी पर तिरंगा फहरा दिया। इससे पूरा देश का मनोबल बढ़ गया। इसके बाद सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक थी बच्चों, टाइगर हिल की लड़ाई। यह चोटी बहुत ऊंची और लगभग सीधी थी। दुश्मन को विश्वास था कि कोई भी सैनिक वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन हमारे जवानों ने रात के अंधेरे में असंभव लगने वाली चढ़ाई की और टाइगर हिल पर तिरंगा लहरा दिया। इस युद्ध में अनेक वीर सैनिकों ने साहस दिखाया। इस युद्ध में भारत के 527 वीर सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया और अनेक सैनिक घायल हुए। कहानियां तो अनेक है दोस्तों, लेकिन आज मैं आपको तीन कहानियां सुनाऊंगी जो लौट के घर ना आए। कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सुनते ही साहस और देशभक्ति की मिसाल याद आती है। दुश्मन की गोलियों का सामना करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए। उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे बचपन से ही सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते थे। जबकि कारगिल युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने सबसे कठिन मोर्चों पर लड़ने का साहस दिखाया। दुश्मन की गोलियों की परवाह किए बिना वे आगे बढ़ते रहे और एक-एक करके कई दुश्मन चौकियों पर कब्जा कर लिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने साथियों का हौसला नहीं टूटने दिया। मिशन पूरा होने के बाद उन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन अनुज नायर ने कारगिल युद्ध में घाटी के कठिन क्षेत्र में अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। उन्होंने दुश्मन के कई बंकरों को नष्ट किया और अपनी टुकड़ी को आगे बढ़ाया। भीषण लड़ाई के दौरान उन्होंने अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा और अंत तक डटे रहे। देश की रक्षा करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके साहस के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जरा सोचिए दोस्तों, जब हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, तब हमारे सैनिक दिन रात गर्मी सर्दी बारिश और बर्फ की परवाह किए बिना देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। भारत की सुरक्षा और देशवासियों की खुशियाँ। लगभग 2 महीने तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने एक एक चोटी वापस जीत ली। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में पूर्ण विजय प्राप्त की। इसी दिन को हर वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, कारगिल की कहानी केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह जीवन जीने की भी कहानी है। यह हमें सिखाती है कि लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखो। जैसे सैनिकों का लक्ष्य तिरंगा फहराना था, वैसे ही आपका लक्ष्य अच्छा इंसान बनना होना चाहिए। केवल अच्छे अंक नहीं बच्चों, बल्कि अच्छे संस्कार भी जरूरी है। साथ ही दोस्तों, परीक्षा कठिन हो सकती है, कभी हार भी मिल सकती है, लेकिन हार मान लेना समाधान

नहीं है। सैनिकों ने भी मुश्किलों के सामने हार नहीं मानी। बच्चों, कारगिल की जीत किसी एक सैनिक की नहीं थी, बल्कि पूरे भारतीय सेना के एकजुट प्रयास की थी। उसी तरह घरों में, आस पड़ोस में और स्कूल में एक दूसरे की मदद करना सीखिए। देशभक्ति केवल सीमा पर नहीं, अपने व्यवहार में भी दिखती है। जब आप अपने आसपास साफ रखते हैं, पेड़ लगाते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तब आप अपने देश की सेवा कर रहे होते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का भारत कल आपके हाथों में होगा। आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई शिक्षक, कोई वैज्ञानिक, कोई कलाकार और कोई सैनिक, लेकिन सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कारगिल विजय दिवस पर हम क्या करते हैं? इस दिन हम उन वीर सैनिकों को याद करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हम उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके साहस की कहानियां सुनते हैं। दोस्तों, कारगिल विजय दिवस केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि अपने वीर सैनिकों को धन्यवाद कहने का दिन है। आइए हम सभी मिलकर उन्हें नमन करें और पूरे गर्व से बोले, नमन है भारत माँ के अमर सपूतों को, शत शत बार बार नमन। चलिए दोस्तों, चलते चलते हम छोटा सा संदेश आप सभी को देना चाहते हैं कि कारगिल विजय दिवस हमें यह संदेश देता है कि सैनिकों के शौर्य और पराक्रम के बल पर आज हम अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं। उनके ही बदौलत हम अपनी जिंदगी को आसानी से, सरलता के साथ जी पा रहे हैं। याद रखिए, देश की रक्षा का यह सिलसिला सिर्फ सरहद पर तैनात जवानों का नहीं, बल्कि हम सबका कर्तव्य है। अपने देश से प्यार कीजिए, इसकी हिफाजत का संकल्प लीजिए और अपने सैनिकों को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखिए।

आपने आपकी अनीशा देवी की जुबानी सुनी विजय दिवस के पराक्रम की शौर्य गाथा, जिसमें उन्होंने विक्रम बत्रा हो, कैप्टन मनोज कुमार पांडे की बहादुरी हो या मेजर राजेश अधिकारी का शौर्य, हर शहीद की अपनी एक शौर्य गाथा है। आज हम उन परिवारों को भी सलाम करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने लाल खोए। उनकी शहादत की बदौलत ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज के दौर में हमारे लिए कारगिल विजय दिवस का क्या मतलब है? हम स्कूल जा रहे हैं, खेल रहे हैं, अपने सपने बुन रहे हैं, यह सब उन सैनिकों के त्याग की वजह से मुमकिन हुआ है ना? हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बने, अपनी पढ़ाई से, अपनी ईमानदारी से और अपने अनुशासन से देश को आगे बढ़ाएं। जब आप मन लगाकर पढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि आप भी देश की सीमा पर खड़ा एक सैनिक बने हुए हैं, बस आपका रण क्षेत्र अलग है।

अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मैं कैसे देश की रक्षा करूँ? आप भी इस देश के सिपाही हैं। जब आप स्कूल में पूरी लगन और ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो आप देश को मजबूत बनाते हैं। जब आप सड़क पर कचरा फेंकने के बजाय कूड़ेदान का इस्तेमाल करते हैं तो आप देश की सेवा करते हैं। जब आप आपस में लड़ाई झगड़ा ना करके प्यार और एकता से रहते हैं तब आप एक सैनिक की तरह ही अपने देश की रक्षा कर रहे होते हैं। हमारे कारगिल के शहीदों ने हमें यही सिखाया है, अपने देश से प्यार करो और इसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दो। नन्ही दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपको ले चलते हैं आपकी नन्ही दोस्त के पास और जानते हैं उनके विचार कविताओं के माध्यम से।

0: सुप्रभात, मेरा नाम वर्षा है और मैं विटाला पब्लिक स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह कविता कारगिल के वीरों को समर्पित है। आशा है कि मेरी प्रस्तुति के माध्यम से मैं उन वीरों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि आप तक पहुँचा सकूंगी। कारगिल के वीरों को नमन। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर जहां बर्फ भी सांसें ताम लेती है, वह जुलाई का सूरज था पर हवाओं में ठंड नहीं बल्कि रणभूमि की तपिश थी। तिरंगा हर चोटी पर लहराए, भारत का मस्तक कभी न चुक पाए। किसी ने माँ की ममता छोड़ी, किसी ने पिता का सहारा, किसी ने बहन की राखी अधूरी छोड़ी तो किसी ने अपने बच्चों का बचपन। लेकिन जब देश ने पुकारा, उन्होंने एक ही उत्तर दिया, पहले भारत फिर सब कुछ। हर सांस कह रही थी, या तो तिरंगा फहराएंगे या उसी तिरंगे में लौटेंगे। टाइगर हिल की ऊंचाइयों पर हर पत्थर आज भी गवाही देती है। आज भी जब कारगिल के उन ऊंची चोटियों पर सूरज की पहली किरण पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो वह हर शहीद को श्रद्धा का प्रणाम कर रही हो। वहाँ की हवाएं आज भी उन वीरों की वीरता का गीत गाती है। हर गाड़ी, हर बर्फ की परत, उन्होंने हमें केवल सीमा की रक्षा नहीं दी, उन्होंने हमें विश्वास दिया। वे जानते थे कि शायद अगली सुबह उनके हिस्से में ना आए, फिर भी उनके होठों पर शिकायत नहीं, आंखों में भय नहीं, बल्कि भारत माँ के लिए अटूट प्रेम था। उनके बलिदान ने हमें यह सिखाया, देशभक्ति केवल शब्द नहीं बल्कि त्याग, समर्पण और बलिदान का दूसरा नाम है। आज हम स्वतंत्र सांस लेते हैं, निश्चिंत होकर विद्यालय जाते हैं, अपने सपनों को पूरा करने की बात करते हैं, क्योंकि सीमा पर कोई अपना नींद, अपना सुख और कभी कभी अपना जीवन भी त्याग देते हैं। आज हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश के अच्छे नागरिक बने, सत्य का साथ दें, ईमानदारी से अपना कार्य करें और अपने राष्ट्र के सम्मान को सदैव सर्वोपरि रखें, क्योंकि देश केवल सीमाओं से नहीं बनता। उन शहीदों की माताओं को प्रणाम जिन्होंने अपने आंसू छिपाकर कहा, मेरा बेटा देश के काम आया। उन परिवारों को सलाम जो आज भी अपने प्रियजनों की याद में जीते हैं, लेकिन भारत माता की सेवा को सबसे बड़ा सम्मान मानते हैं। अपने देश का सम्मान करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और ऐसा भारत बनाएंगे जिस पर हर शहीद को गर्व हो। शहीद मरते नहीं, वह अपने पीढ़ी को साहस देना सिखाते हैं। वह हर बच्चे को देशभक्ति का अर्थ बताते हैं। वे हर भारतीय के हृदय में सदैव जीवित रहते हैं। जब जब तिरंगा आकाश में लहराएगा, जब जब राष्ट्रगान गूंजेगा, उनकी अमर गाथाओं से ही सजती है भारत की कहानी। जय हिंद।
1: वक्त आ गया है कि अब हम अपने इस खास सफर को यहीं विराम दें, लेकिन याद रखिए, कारगिल की यह गाथा कभी पुरानी

पढ़नी चाहिए। आज जब आप घर से बाहर निकले तो एक बार आसमान की तरफ देखकर उन शहीदों को मन से ही थैंक यू बोल दें। उन वीर माताओं को सलाम जिन्होंने अपने लाल इस देश की मिट्टी पर कुर्बान कर दिए। उन परिवारों को नमन जिनका त्याग शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज कारगिल विजय दिवस के इस पवित्र अवसर पर आइए हम सब मिलकर एक वादा करें, हम कभी भी इन वीरों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम भारत को दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बनाएंगे। जब कारगिल की पहाड़ी बर्फीली हवाओं से कांप रही थी, यह युद्ध था साहस का, यह युद्ध था अटूट संकल्प का। हमारे वीर जवानों ने उन दुश्मन पहाड़ियों को अपना ठिकाना बनाया और दुश्मन को धूल चटाकर साबित कर दिया कि भारतीय सेना के इरादे हिमालय से भी ऊंचे हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल जगत।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: HIV/AIDS से जुड़े सभी सवालों के लिए आज ही टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। नैको व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: दी, ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका?
3: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसके तहत आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित जितेंद्र अभिषेकी का गायन। इनके साथ तबले पर सुभाष कामत, हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावालकर और तानपुरे पर मेघना श्रीखंडे व शेखर कुंभोजकर ने संगति की है। तो लीजिए सुनिए पंडित अभिषेकी का गायन।

राग शुमत भैरव, बोल हैं दर दर पत पत, विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं आज मौजूद भई, तथा द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित जितेंद्र अभिषेकी का गाया राग शिवमत भैरव सुन रहे थे। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन इन फरमाइश फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
2: हेलो फरमाइश
3: हेलो फरमाइश
4: हेलो फरमाइश
5: हेलो फरमाइश

साहस और सर्वोच्च बलिदान की जब भी बात होगी, कारगिल के अमर वीरों का नाम सदैव लिया जाएगा। उन वीर सपूतों को शत शत नमन करते हुए आइए संगीत से सजे आपके अपने लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश का शुभारंभ करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी श्री विजयपुरम के लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश में मैं श्री विद्या आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज 26 जुलाई का दिन पूरे देश के लिए

0: गौरव, सम्मान और कृतज्ञता का दिन है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हम उन वीर सैनिकों को शत शत नमन करते हैं जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में अपने अदम्य साहस, पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान से भारत को विजय दिलाई। उनका त्याग, उनका साहस और देश प्रेम सदैव हमारी प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। अब बारी है आपसे रूबरू होने की, आइए बात करते हैं अपने श्रोताओं से, सुनते हैं उनकी बातें, उनकी फरमाइशें और उनके पसंदीदा गीत। हमसे जुड़ने के लिए टेलीफोन नंबर्स है 2325558 और 2325400, एसटीडी कोड है 03192। तो देर किस बात की, मिलाइए नंबर और जुड़ जाइए आज के कार्यक्रम के साथ। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, हमारी बात किन से हो रही है?
1: मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा के विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: विश्वजीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले कौन से गीत की फरमाइश करना चाहते हैं वो बता दीजिए।
1: मैं नाम फिल्म से एक गाना सुनना चाहता हूँ, मेरा देश मेरा मुल्क, यही गाना सुना दीजिए।
0: जी, आपको आपकी पसंद का गीत ज़रूर सुनवाएंगे। तो विश्वजीत जी बताइए, आज कारगिल विजय दिवस है और आज के पहले कॉलर से जानना चाहेंगे कि वो क्या संदेश होगा जो आप हमारे वीर जवानों और हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे।
1: मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरा देश के रक्षा के लिए तो मेरा जवानों का बहुत काम है, तो इसलिए अभी सुरक्षित रहने के लिए बोल रहा हूँ।
0: जी, बहुत ही अच्छा संदेश दिया है आपने। कारगिल विजय दिवस हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का दिन है। हमारे वीर जवानों को शत शत नमन और आपको भी इस विशेष दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो विश्वजीत जी, अब वक्त हो गया है आपको अपने पसंद का गीत सुनवाने का।
1: जी जी जी, तो मैं थोड़ा दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ।
0: जी जरूर।
1: मेरे साथ सुनेगा अविनाश केले जी है, आशुतोष दादा जी है और भगवान मैया जी और और जितना भी जवान के लिए गाना डेडिकेट रहेगा।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो, मैं
0: जी, हमारी बात किन से हो रही है और आप कहाँ की रहने वाली
1: तो
0: हैं?
1: मेरे प्यारे प्यारे मैम को गुड
0: नमस्कार,
1: मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग जी,
1: मैं
0: आपका
1: ग्राम
0: शुभ नाम
1: गुनोरे
0: बताइए।
1: हाँ मैं ग्राम गुनोरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुरवे बात कर रही हूँ। तो
0: तनुश्री जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कौन सा गीत सुनवाएं आज आपको?
1: उनका नाम है राजा हिंदुस्तानी और गाने के बोले, पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की सजा है। ये गाना है मैम।
0: बहुत ही सुंदर आवाज़ है तनुश्री आपकी। बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ।
0: कितने सालों से सीख रही हैं आप?
1: अब 3 साल पूरे होंगे इस सितंबर को। मैम
0: जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें हुई। तो सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का गीत।
1: 2-3 दोस्तों का नाम लेना चाहती हूँ।
0: जी ज़रूर लीजिए।
1: पहले तो आप है, फिर मेरे पापा को डेडिकेट रहेगा, भगवान सिंह परमार जी है, राकेश जी है शिमला से, अविनाश जी है, गंगाधर सावनकर जी है, रमेश प्रजापति जी है और प्रेम सिंह सिसोदिया जी है।
0: जी, आप अपने परिवार अपने मित्रों के साथ मिलकर सुनिए आपकी पसंद का गीत। फिल्म है राजा हिंदुस्तानी से।
1: ओके बाय बाय।
0: पूछो

0: हेलो फरमाइश,
1: जय
0: हेलो
1: माता दी,
0: फरमाइश,
1: जय माता दी।
0: जय माता दी। आप कौन
1: मेरा
0: और
1: नाम
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान,
0: जी,
1: गाँव का नाम अंत मेरे बुगला।
0: जी, आज कौन सा गीत सोच रखा है आपने?
1: जी मैडम, आज मैं सुनना चाहूंगा क्योंकि ये देश वीरों का वो काफी दिनों से हाथों में, उसी पर ये गाने के बोला, ये देश वीर जवानों का।
0: जी, नया दौर फिल्म का गीत है ये।
1: जी
0: जी, आपने आज के खास अवसर पर देशभक्ति गीत चुना, बहुत ही सुंदर पसंद है आपकी। बताइए, कैसे हैं पूरन वर्मा जी आप?
1: बस मैडम बढ़िया हूँ, क्योंकि ऐसे ये ऐसे दिवस होते हैं कि हमें आज के दिन नहीं, हम यहाँ इसी चीज को हमेशा के लिए याद रखना चाहिए मैडम।
0: जी, आज के सिर्फ आज ही के दिन ने हमेशा के लिए याद रखना चाहिए, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। जी, तो सुनवा रहे हैं पूरन वर्मा जी।
1: वो कुछ दोस्तों को याद कर सकते हैं आप इजाजत दे
0: जी,
1: तो।
0: ज़रूर ज़रूर,
1: जी मैडम, सबसे पहले तो आप है
0: धन्यवाद।
1: और मेरा दोस्त है शिवा लोहार।

0: अविनाश जी है, अमर साहु है, गजराज लोधी जी है, भगवान सिंह जी है, रमेश पात्र, अमल, विमल शिमला से, राकेश है, और विजयपुरम स्कूल लाइन से पूर्णिमा मैडम है, और जितने कॉलर लाइव सुनने वाले उन श्रोताओं के लिए।
1: तो सुनवा रहे हैं आपको नया दौर फिल्म का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्कार जी, आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेम सिंह जी। सबसे पहले बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: शर्मा फिल्म का सुनवा दीजिएगा, तू मेरा शर्मा।
0: जी आप
1: बताना
0: सुनना चाहते
1: चाहेंगे?
0: हैं कर्मा फिल्म का
1: हाँ
0: गाना?
1: जी, तू मेरा शर्मा।
0: जी बताइए कुछ अपने बारे में प्रेम सिंह जी।
1: खेती किसानी का काम करता हूँ और अभी खेत में काम कर रहे खरपतवार निकालने का।
0: जी अभी आपके गांव का मौसम कैसा है?
1: जी काफी अच्छा मौसम हो चुका है, ठंडी हवाएं चल रही है, बारिश भी हो रही है, तो
0: जी तो सुनवा रहे हैं आपको,
1: साथ में मोबाइल ऐप का कार्यक्रम भी चल रहा है आपका।
0: कार्यक्रम भी सुन रहे हैं। और कौन सा गीत सुन और कौन सा प्रोग्राम आप सुनते हैं आप?
1: जी विजयपुरम से हम सुनते हैं।

0: फोन आउट प्रोग्राम आता है ना एक आपका।
1: जी हेलो डियर फ्रेंड।
0: हाँ हेलो डियर फ्रेंड, और म्यूजिक लवर्स भी सुनते हैं,
1: जी
0: और रविवार का तो हमें साथ इंतजार रहता है। जी
1: रविवार का इंतज़ार, हेलो फरमाइश के लिए आपको इंतज़ार रहता है।
0: बिल्कुल,
1: अच्छा
0: इसमें आप
1: लगा।
0: बताओ। हाँ हर राज्य के सफर करते हैं, गाने सुनते हैं, अपने बारे में बताते हैं, बड़ा अच्छा लगता है।
1: तो
0: कारगिल दिवस है,
1: जी उस बारे
0: और
1: में आप कुछ
0: उसमें
1: संदेश देना चाहते हैं श्रोताओं को?
0: बिल्कुल बताना चाहेंगे। हमारा जो भारत देश आजाद हुआ है, विजय कारगिल के रूप में हमें मनाया जाता है, तो
1: जी
0: मतलब शहीद हुए देश के नौजवान, फिर भी हमें उनकी कुर्बानियों को भुलाना कभी नहीं चाहिए।
1: जी और हमेशा अपने देश का हित हमें सबसे ऊपर रखना चाहिए, हित के बारे में सोचना चाहिए, आज ही नहीं हर दिन सोचनी चाहिए।
0: बिल्कुल, हमारे दिल में ऐसी भावना होनी चाहिए, एक दूसरे से प्रेयर से रहे, मतलब और कभी भी अपने देश के बारे में ऐसा कुछ होना तो आगे आना चाहिए, मतलब खड़े रहना चाहिए। जी
1: और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे देश का गौरव बढ़े।
0: बिल्कुल,
1: तो सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का गीत, फिल्म है कर्मा।
0: थैंक यू सो मच।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: हेलो फरमाइश।
6: हेलो, नमस्कार बहन जी।
5: नमस्कार, कौन और कहां से बोल रहे हैं?
6: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल बोल रहा हूं बहन।
5: मांगीलाल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गाना बता दीजिए
6: बहन जी। फिल्म का नाम हैगा बाजी और गाने के बोल हैं देख के अकेली मोए वर्षा सताए।
5: अच्छा, आपने जो गीत पसंद किया उससे तो हमें यही अंदाजा हो रहा है कि शायद आपके यहाँ मौसम बड़ा ही सुहाना है और बारिश भी हो रही है। क्या हमारा अनुमान सही है?
6: नहीं, आपका अनुमान बहन जी बहुत सही है। बारिश भी हो रही है रुक रुक के हल्की हल्की और आसमान में बिल्कुल काले काले एकदम बादल का आवागमन हो रहा है।
5: तो बरखा सता रही है आपको?
6: हाँ, बरखा सता रही है जी।
5: ऐसे कौन सा मौसम है जो आपको बहुत पसंद है?
6: मौसम यही बढ़िया है मेरे हिसाब से।
5: तो आप बहुत खुश हैं और आज कारगिल विजय दिवस भी है, तो ऐसे में हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, हमारे वीर जवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
6: बस बहन जी, मैं क्या कहूँ, वीर जवान तो वीर जवान ही है, उनकी तो कोई भी प्रशंसा करे उतनी कम है, क्योंकि हम तो अपने घरों में वो अपनी मतलब वो सेना लेकर खड़े हैं वो
5: जी,
6: और अपने प्रति वो मतलब लड़ाई कर रहे हैं
5: जी, वो साहस से मेहनत से वहाँ खड़े हैं, तभी हम अपने घरों में चैन से रह पाते हैं। आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है, तो सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का बाजी फिल्म का गीत।
6: बहन जी, कुछ मित्रों को याद कर सकता,
5: मित्रों का नाम लेना चाहते हैं तो आप जरूर लीजिए।
6: नरेश प्रजापति जी है, गजराज लोधी जी है, बसंती लाल जी है, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, राम बाबू शर्मा जी हैं, अमर सिंह साहू जी हैं, लोकेन्द्र वर्मा जी हैं उज्जैन से, राकेश जी हैं शिमला से, शारदा प्रसाद जी हैं मथुरा से, त्रिपुरा से हमारे भाई साहब हैं आशुतोष जी, बहन संगीता देवनाथ जी, और सभी मित्रों को यह गाना दे दीजिए।
5: मांगीलाल जी, आप आनंद लीजिए अपने सभी मित्रों और परिवार के साथ फिल्म बाजी का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश।
0: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते, हमारी बात किन से हो रही है?
0: मैं कश्मीर सोना मरग से आपको नीमी श्रोता लतीफ अहमद रैना।
1: जी लतीफ जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतने दूर से कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आज आपको?
0: फिल्म का नाम है जान तेरे नाम,
1: जी
0: ये रिकॉर्ड है जब कॉलेज बंद हो जाएगा।
1: जी ये गीत सुन सुनकर सबको अपने कॉलेज के दिनों की याद ज़रूर आएगी। आप भी अपने मित्रों को मिस करते हैं?
0: हाँ, बहुत मिस करता हूँ। और मेरे साथी धर्मवीर अंकल दिल्ली से,
1: जी
0: और रमेश प्रजापति, और राकेश शिमला से,
1: जी तो सुन
0: और यहाँ पे मौसम मैडम 4-5 दिन 6 दिन से मौसम गड़बड़ी, बहुत बारिश पड़ता है यहाँ पे। हाँ
1: बहुत बारिश हो रही है,
0: हाँ
1: तो कुछ नुकसान भी हो रहे हैं क्या?
0: नुकसान भी हुआ, बहुत जगह हुआ, यहाँ बड़गाम में भी हुआ, डोडा जिला कश्तवाड़ में भी हुआ, रजौरी पुनिश।
1: तो क्या करते हैं ऐसे में आप सेफ्टी के लिए?
0: बस एहतियात करते हैं, यहाँ नदी में बहुत पानी हो गया, ज़्यादा दरिया जेल में भी पानी हो गया।
1: जी तो आशा करते हैं, हम यही दुआ करेंगे कि जल्द से वहाँ का मौसम ठीक हो जाए।
0: और सर्द भी बहुत हो गया, सर्द मौसम यहाँ पे कश्मीर में आजकल। और यहाँ से अम्बरनाथ भी चलता है, भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं बहुत स्टेटों से यात्रा।
1: जी, तो
0: अब
1: उनको भी अभी
0: कल
1: दिक्कत
0: कल
1: हो रही
0: सुन,
1: होगी ऐसे मौसम
0: हाँ
1: में।
0: उनको भी दिक्कत होती है। अब वो आस्ते आस्ते, अब तो वो छोड़ा है, कल तो उनको छोड़ा है, आज भी छोड़ता है और कल भी छोड़ा है उन्हें।
1: जी हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ का मौसम ठीक हो जाए। अब सुनवा रहे हैं आपको फिल्म जान तेरे नाम फिल्म का गीत।
0: शुक्रिया मैडम।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो परमेश, नमस्कार।
0: नमस्कार, हमारी बात किनसे हो रही है?
1: जी मैम, हम बोल रहे हैं सगोरिया स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से। बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहे हैं मैम जी।
0: बसंती लाल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के आखिरी कॉलर हैं आप। बहुत
1: जी
0: दिनों
1: जी
0: बाद आपसे
1: मैम,
0: बातें हो रही है। इन दिनों क्या चल रहा है, कहाँ थे आप?
1: बस मैम अभी थोड़ा काम से टाइम भी नहीं मिला। शादी ब्याह का टाइम भी चल रहा था, फिर खेत को जुताई वगैरह करी, फिर गेंदा फूल की रोपनी तैयार करी, फिर गेंदा फूल लगाया और सोयाबीन मक्का में दवाई डालने का काम भी चालू हो गया मैम, खरपतवार नियंत्रण के लिए।
0: अच्छा, तो यानी इन
1: यही
0: दिनों
1: काम
0: आप
1: से।
0: खेती किसानी में व्यस्त थे।
1: जी जी जी और आगे हमें दिनों में भी रहना पड़ेगा। और हल्की हल्की बुहारें गिर रही है, रिमझिम रिमझिम पानी गिर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और आपसे बात करने का मन कर रहा था तो मैंने कहा लगाओ तो लग भी गया मेरा कॉल।
0: जी बसंती लाल जी, हम यही दुआ करेंगे कि आपकी मेहनत रंग लाए और अच्छे पैदावार हो। तो बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आज, जल्दी से बता दीजिए, समय
1: मुझे
0: की
1: मैम
0: कमी है।
1: जी जी मुझे जुड़वा मूवी का गाना सुनना, मेरे दिल में बस जाए, मुझको फंसा ले या फंस जाए, वो वाला गाना सुनना चाहूंगा मैम। कुछ मित्र है हमारे, शामिल करना चाहूंगा नाम उनका।
0: जी जरूर।
1: हमारे बड़े भाई साहब है मांगीलाल चंदेल जी, अनु भट्टाचार्य जी, दलपत सिंह पेंटर जी, अविनाश जी, सप्तमी कुंडुम जी, और मोनिका जी है, शिप्रा जी है, और संगीता जी है, और आशुतोष जी है। जितने भी सुनने वाले सबको ये गाना डेडिकेट रहेगा, और प्यारी प्यारी मैम आपको भी गाना डेडिकेट रहेगा
0: बहुत
1: बहुत
0: बहुत
1: दिनों के बाद।
0: धन्यवाद। सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, और इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम हेलो फरमाइश अब यहीं समाप्त होता है। इस विशेष दिन पर एक बार फिर कारगिल के अमर वीरों को विनम्र श्रद्धांजलि। आप सबने अपनी फरमाइशों, संदेशों और प्यार से इस प्रस्तुति को यादगार बनाया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और अब दीजिए श्री विद्या को कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार।

यहीं समाप्त होता है इस विशेष दिन पर एक बार फिर कारगिल के अमर वीरों को विनम्र श्रद्धांजलि। आप सबने अपनी फरमाइशों, संदेशों और प्यार से इस प्रस्तुति को यादगार बनाया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और अब दीजिए श्री विद्या को कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब से कुछ देर बाद यानी 10:55 पर सुनिए हमारा अति विशिष्ट कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है, लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: क्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
3: कहाँ
6: एडमिशन कराने हैं? खाता हुआ एक्टिव,
2: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर

भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही डीआरडीओ ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1,500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, ओडिशा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों

से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छंटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अड़िग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में 4

आए सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो, या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भलीभांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। ये पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था, आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे, स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में वर्षों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेस्ट

का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन

मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है, जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त

0: हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है, ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है, अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए, मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
4: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। अस्माकं जीवने केचन दिनांकाः तादृशाः भवन्ति येषां स्मरणार्थं दिनदर्शिका न अवलोकनीया भवति। अद्य तादृशः एव जुलाई मासस्य 26 दिनांकः अस्ति। अद्य कारगिल विजय दिवसः अस्ति। एषः दिवसः अस्मान् गर्वान्वितान् करोति। एतत् दिनम् अस्माकं वीराणाम् अद्भुतं साहसं नः स्मारयति। कारगिल इत्यस्य उन्नत श्रृंखलाः दुष्करं वातावरणं शत्रुसमाह्वानं वा वस्तुतः प्रत्येकमपि परिस्थितयः अस्माकं सैनिकानां समक्षम् आसन्। परं तेषां साहसं प्रत्येकं समाह्वानात् बलिष्ठमासीत्। ते मा भारती इत्येतस्याः रक्षार्थं स्वीयं सर्वस्वं समर्पितवन्तः। अद्य कारगिल विजय दिवसावसरे अहं सर्वान् हुतिंगतान् वीर सैनिकान् च प्रति श्रद्धापूर्वकं नमनाञ्जलिं प्रस्तौमि। सखायः, अद्यतनं भारतं केवलं स्ववीराणां स्मरणमेव न करोति, अपितु नूतन संततिं यावत् तदीय गाथाः अपि प्रापयति। अनया भावनया अस्मिन् वर्षे विशिष्टा एका शौर्य विजय यात्रा प्रवर्तिता। जुलाई मासस्य 14 दिनांके दिल्ल्याः राष्ट्रिय समर स्मारकतः समारब्धा एषा मोटर साइकिल यान यात्रा द्रासस्थितं कारगिल समर स्मारकं यावत् प्राप्नुयात्। एतस्याः सन्देशः अस्ति वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट इति। एषा यात्रा अस्मान् स्मारयति यत् राष्ट्राय प्रदत्तं बलिदानं कथमपि विस्मृतियोग्यं न भवति। सखायः, अद्यत्वे भारतं स्वकीयानां सैनिकानां साहसवर्धनेन सह स्वीयाः प्रविधिक्षमताः अपि सततं दृढाः करोति। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव भारतीय नौसेनायां INS महेन्द्रगिरि इत्याख्यः योद्धृजलपोतः सम्मिलितः जातः। एषः आधुनिकः योद्धृजलपोतः भारते एव परि

सखयः मम विश्वासः अस्ति यत् एतत् श्रुत्वा भवत्

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവിൽ 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെഡ്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमताएं लगातार बढ़ा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
0: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: संबोधन के समापन में श्री मोदी ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की।
1: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल

0: असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को सुझाव दिया है कि वे काला सागर से गुजरने वाले जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन कर लें। परामर्श में कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Diwas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports, or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Diwas is being celebrated today.
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy.
2: कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। दो तीन दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है।
1: The Prime Minister said, every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. He elaborated that it is India's first rocket developed by the private sector. Mr. Modi praised the young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said, a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July. In his Mann Ki Baat address today, the Prime Minister said, every Indian is cheering for the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago. The Prime Minister exuded pride that Indian youth have achieved remarkable feats in sports events recently. On the subject of plastic pollution, Mr. Modi expressed concern that waste from single-use plastic continues to harm nature for years. He stressed on the proper disposal of plastic. Kargil Vijay Diwas is being observed today across the country to honour the bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. On the occasion, the President, the Vice President and the Prime Minister paid tributes to the brave soldiers who laid down their lives in defence of the motherland. In Ladakh, Union Defence Minister Rajnath Singh today paid homage to the brave hearts of the Kargil War at the Kargil War Memorial in Dras. Addressing the gathering, Rajnath Singh said the Kargil War was not only India's military and diplomatic victory, but also a defining moment when the world witnessed the indomitable courage and valour of Indian soldiers. The Indian embassy in Ukraine has said that it is closely monitoring the situation following the incident involving the cargo vessel MV Aegean Ragnar, which was struck at the port of Odessa yesterday. In a social media post, the embassy said two out of four Indian nationals on board have been

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
3: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
4: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में नीना मेहता और राजेंद्र मेहता की आवाज़ों में चंद गज़लें सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं।

नमस्कार प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब? आशा है कि आप सब व्यस्त होंगी घर के कामों में, है ना? तो चलिए थोड़े अपने व्यस्त समय से समय हमें भी दे दीजिए, क्योंकि आपका चहेता कार्यक्रम घर संसार लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं, आपकी सखी, आपकी दोस्त रीमा अरोड़ा। चलिए आज के अंक को शुरू करते हैं, आज APJ अब्दुल कलाम जी के कुछ शब्दों से। उन्होंने एक समय कहा था कि अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। और बहनों, मैं ये मानती हूँ कि जीवन में जो भी लक्ष्य हो, अगर आप निरंतर प्रयास करते रहें, उस लक्ष्य को छोड़े ना, तो बिल्कुल आप उसे वैसे ही भेदेंगे जैसे अर्जुन ने मछली की आंख भेदी थी, है ना? तो चलिए, इतना प्यारा सुविचार तो हमने जान लिया, अब अपनी बातों को जो है थोड़ा गीत संगीत की ओर लेके जाते हैं, और आज सुनते हैं हमारा सबसे पहला और सुनहरा सा गीत।

दिवस के बारे में हम बात करते हैं जिसे हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है, ताकि उन वीरों को याद किया जा सके जिन्होंने अपनी वीरता और देशभक्ति का परिचय देते हुए ऑपरेशन विजय को सफल बनाया। 1999 की गर्मियों में पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने नियंत्रण रेखा पार करके कारगिल और द्रास सेक्टर की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। इस घुसपैठ को ख़त्म करने के लिए भारतीय सेना और वायुसेना ने ऑपरेशन विजय चलाया। लगभग 2 महीने तक चले इस भीषण युद्ध में भारतीय जवानों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और 26 जुलाई 1999 को सभी चोटियों को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराकर फिर से हमारा तिरंगा वहां फहराया। बहनों, ये दिन सिर्फ एक जीत का जश्न नहीं है, बल्कि यह उन जाबाज 527 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है, जिन्होंने संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। 2 लाख भारतीय सैनिकों के साथ ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था। बहनों, कारगिल युद्ध स्मारक, जिसे द्रास युद्ध स्मारक भी कहा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। ये स्मारक कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के बलिदान की याद में बनाया गया था। स्मारक स्थल से वह टाइगर हिल साफ दिखाई पड़ती है जहां कारगिल युद्ध के दौरान सबसे भीषण लड़ाई हुई थी। यहाँ एक गुलाबी बलुआ पत्थर की दीवार है जिस पर शहीद सैनिकों के नाम अंकित हैं और साथ ही में युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियार और टैंक एक संग्रहालय भी है। चलिए बहनों, उन शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि उन वीरों ने अपने घर छोड़कर अगर उन चोटियों पर तिरंगा ना लहराया होता तो आज हमारे देश का नक्शा कुछ और ही होता। इसलिए उन वीरों को श्रद्धांजलि, उन वीरों को धन्यवाद करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो चलिए, अपने कर्तव्य को निभाते हुए यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा देशभक्ति गीत सुनते हैं।

बहनों, चलिए अब थोड़ा सेहत की ओर रुख करते हैं और आज आपको विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर गुरप्रीत कौर जी की वार्ता सुनवाते हैं और हेपेटाइटिस के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।

कार्यक्रम से जुड़ी मेरी प्यारी सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, चलिए आज हम कुछ बात करते हैं सेहत के विषय में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संक्रमण के बारे में जिसे हेपेटाइटिस ए के रूप में जाना जाता है। सभी प्रकार के वायरल हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। हेपेटाइटिस क्यों होता है? तो हेपेटाइटिस होता है हेपेटाइटिस ए नाम के वायरस की वजह से। हेपेटाइटिस का मतलब है हाइपर यानी लीवर, और टाइटिस का मतलब है उसमें सूजन आ जाना। हाइपर नाम के वायरस की वजह से लीवर के ऊपर सूजन आ जाती है। क्या इसके कारण हैं, क्या लक्षण होते हैं और क्या उपचार करने

चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। क्या लक्षण दिखेंगे? कैसे पहचानेंगे कि आपको हेपेटाइटिस ए नामक संक्रमण हो गया है? सबसे पहले आपको अत्यधिक वीकनेस और थकान महसूस होने लगेगी। उसी के साथ सबसे ज़रूरी लक्षण जो हमें दिखाई देता है वह है यूरिन का अत्यधिक पीला रंग। साथ में आपकी भूख का कम होना और हर समय मतली जैसा महसूस होना, पेट में दर्द, बुखार का होना, त्वचा का पीला पड़ना और आँखों के नीचे पीलापन दिखना और साथ में अन्य लक्षण जैसे जोड़ों में दर्द, वजन का कम होना, पतले दस्त, त्वचा में खुजली और पैरों में सूजन का होना भी मुख्य लक्षण होते हैं। क्यों हो सकती है हेपेटाइटिस की बीमारी और क्या है इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन? तो पहला है दूषित पानी। अगर पानी दूषित है और उसमें ही इन्फेक्शन है तो संभावना है आपको हेपेटाइटिस ए होने की। दूसरा है वायरस से संक्रमित। अगर कोई व्यक्ति उसके साथ अगर आपका यौन संबंध होता है तो वहाँ से भी यह संक्रमण सीधे आप तक पहुँच सकता है। तीसरा कारण होता है अगर आप मछली खाते हैं और वह मछली प्रदूषित तालाब या नदी से निकाली गई है तो इस कंडीशन में भी यह संक्रमण आप तक सीधा पहुँच सकता है। और एक कारण इसमें जो देखा जाता है वो होता है हेपेटाइटिस ए संक्रमित व्यक्ति का मल उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में अगर हम आते हैं तो यह संक्रमण आप तक सीधा आ सकता है। मेडिकली भी यह ट्रांसफ़र हो सकता है अगर संक्रमित व्यक्ति का खून आपको चढ़ा दिया जाए और आपको पता ही नहीं हो कि उसको इन्फेक्शन है तो डायरेक्टली यह आपके अंदर इन्फेक्शन आ सकता है। इसके अलावा अगर संक्रमित व्यक्ति की सुई का प्रयोग किया जाए तो भी यह संक्रमण सीधे आप तक पहुंच सकता है। आज के समय में अस्पतालों में इसकी संभावना कम है, परंतु ड्रग्स लेने वाले अक्सर ऐसी गलती कर बैठते हैं। वैसे तो ड्रग्स अपने आप में ही घातक होते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए। हेपेटाइटिस ए के केस में आपका बचाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बहनों, अभी आपने हेपेटाइटिस के लक्षणों के बारे में सुना और अब मैं आपको इसका उपाय यानी उपचार बता रही हूँ जो आप खुद को हेपेटाइटिस ए से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या करना है हमें? खाने से पहले और शौच के बाद अच्छे से साबुन से हाथ धोने हैं। दूसरा उपाय जो हमें करना है, खुला रखा पानी जो हम बाहर जाकर पीते हैं तो हमें यह अवॉइड करना है। अगर आप बाहर जाते हैं तो बोतल का पानी या फिर फिल्टर पानी पी सकते हैं या फिर उबला हुआ पानी पी सकते हैं। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, आप फल कहाँ से खरीदते हैं? अगर साफ़ सुथरी जगह नहीं है तो वहाँ से आप फल और सब्जियाँ ना खरीदें। अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो आपको वह बंद करनी है। अगर आपको यह संक्रमण हो जाता है तो आपको सबसे ज़रूरी आराम करना होता है और भरपूर पानी का इस्तेमाल करना होता है जिससे यह इन्फेक्शन मल मूत्र के रास्ते से जल्दी से शरीर से बाहर निकल सके। और क्या नहीं करना है हमें? हमें तेल की चीज़ें, मसाले की चीज़ें और मसालेदार खाना यह बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और आप एक और चीज़ का ध्यान रखिए, खुद के मन से कोई भी दवाई मत लीजिए। आपको अच्छे डॉक्टर से ज़रूर दिखाना चाहिए। अपने मन से ली गई दवाई आपको लीवर के लिए नुकसानदायक हो सकती है और इसके लिए डॉक्टर के परामर्श से ही उपचार करना चाहिए। याद रखिए, हेपेटाइटिस ए पूरी तरह से ठीक हो सकता है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम बड़ी से बड़ी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और एक स्वस्थ शरीर का निर्माण कर सकते हैं।

तो यह था बहनों हेपेटाइटिस से बचने का तरीका। उम्मीद करती हूँ आप इसे सुनकर लाभान्वित हुए होंगे। बस इसी उम्मीद के साथ आपकी सखी आपसे विदा लेती है। धन्यवाद।

बहनों, हमें आशा है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस से जुड़ी गुरप्रीत कौर जी की जानकारी से आपने काफ़ी कुछ जाना होगा, है ना? तो चलिए अब अपनी बातों को विराम देते हुए यहाँ एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

नज़रिया देते हैं। बहनों, अभिभावक जो है वो माता पिता के साथ वो भी होते हैं जो आपका पालन पोषण करते हैं, जो कोई भी हो सकता है। कभी कभी किसी के दादा दादी तो कभी कभी किसी के नाना नानी भी अभिभावक हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार कुछ अनजान व्यक्ति भी बच्चे को अडॉप्ट करके उसके अभिभावक बन सकते हैं। वो जीवन भर आपका ख्याल रखते हैं, आपको इस समाज में रहना सिखाते हैं, आपके संघर्ष में आपके साथ खड़े होते हैं, जब खुशियाँ आएं तो मिलकर बांटते हैं और आपके गम के भी वही साथी बनते हैं। बहनों, हर साल जुलाई माह के चौथे रविवार को अभिभावक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य ही है उन अभिभावकों के प्रति अपनी कृतज्ञता को दर्शाते हुए उनका धन्यवाद करना। वैसे तो आभार प्रकट करने का सबका अपना तरीका होता है, लेकिन आज जब बच्चों के पास समय की सबसे ज़्यादा कमी है,

बहनों, आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा, अभिभावक, जिसका अर्थ अगर हम पढ़ने जाएं तो शब्द ही कम पड़ जाएं, क्योंकि अभिभावक वो है जो आपको इस दुनिया में जीना सिखाते हैं, आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, आपको पढ़ना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं और जीवन जीने का एक

व्यक्ति भी बच्चे को अडॉप्ट करके उसके अभिभावक बन सकते हैं। वो जीवन भर आपका ख्याल रखते हैं, आपको इस समाज में रहना सिखाते हैं, आपके संघर्ष में आपके साथ खड़े होते हैं। जब खुशियाँ आए तो मिलकर बांटते हैं और आपके गम के भी वही साथी बनते हैं। बहनों, हर साल जुलाई माह के चौथे रविवार को अभिभावक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य ही है उन अभिभावकों के प्रति अपनी कृतज्ञता को दर्शाते हुए उनका धन्यवाद करना। वैसे तो आभार प्रकट करने का सबका अपना तरीका होता है, लेकिन आज जब बच्चों के पास समय की सबसे ज्यादा कमी है, तब ऐसे में उनके साथ समय बिताना, कुछ लम्हा बातें करना, कुछ कहना, कुछ पूछना, कुछ सुनना और उनके साथ कुछ पल मुस्कुरा देना ही एक तोहफे से कम नहीं है। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में पहले माँ बाप बच्चों के पालन पोषण में लगे रहते हैं और कब उम्र ढल जाती है पता भी नहीं चलता। ऐसे में कुछ पल ठहर कर उनके पास बैठिए और कुछ नई यादें बनाइए।

श्रोताओं, अभी आप महिलाओं के लिए कार्यक्रम सुन रहे थे घर संसार। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi remembers brave hearts of the nation on Kargil Vijay Divas today, says their sacrifices for the nation fill everyone with pride. In his Mann Ki Baat program, Mr. Modi lauds collective perseverance of Indian scientists and engineers, leading to countries scaling new heights in defense production and space sector. Mr. Modi says he is proud of the nation's youth power, who've been performing exceptionally well in sports events and international Olympiads. President Draupadi Murmu and Vice President C.P. Radhakrishnan lead the nation in paying tributes to country's brave soldiers for their supreme sacrifices during Kargil War. Government urges Indian nationals to assess the prevailing security situation before accepting assignments on commercial vessels operating in the Black Sea region. And IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over central Maharashtra and Odisha today. Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Divas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered as Kargil Vijay Divas is being celebrated today.
1: आज कारगिल विजय दिवस है. ये दिन हमें गर्व से भर देता है. ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है. कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था. उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया. आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ.
0: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy. The Prime Minister said every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. Mr. Modi praised the young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July.
1: Catch the rain का संदेश बहुत सीधा है. जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए. इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही. मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है.
0: In his Mann Ki Baat address today, the Prime Minister said every Indian is cheering for all the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago.
1: हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की. पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं. उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है. यह एक ऐतिहासिक जीत है. हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता. लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है. लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था. अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है.
0: The Prime Minister also spoke about science Olympiads, noting that a large number of students participate in these events.
1: इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड

0: इन कॉम्पिटिशन में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले 1 दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता, यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते, इनमें 1 गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है।
1: In this edition of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi mentioned Kashmir's traditional Vagu mat, which is crafted out of reeds and paddy straw. Mr. Modi said that the country is moving forward with the mantra of vocal for local and urged people to make Kashmir's Vagu a part of their homes. The Prime Minister expressed satisfaction that people across the country are fulfilling their responsibility towards nature through the Ek Ped Ma Ke Naam campaign. On the subject of plastic pollution, Mr. Modi expressed concern that waste from single-use plastic continues to harm nature for years. He stressed on the proper disposal of plastic. Mr. Modi reiterated his call for everyone to worship Lord Ganesh idols made from country's own clay during Ganesh Utsav instead of idols made of POP.
0: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
1: The nation will celebrate National Handloom Day on the 7th of August. He urged people to honor weavers by encouraging handloom crafts and further strengthen the spirit of being vocal for local.
0: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: The Prime Minister also mentioned khadi, saying that khadi was very dear to Mahatma Gandhi.
0: हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें।
1: Tomorrow, the 27th of July, marks the death anniversary of Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam. Mr. Modi said Dr. Kalam's personality embodied many inspiring facets, yet the role of a teacher was closest to his heart. Concluding his address, Mr. Modi spoke about Independence Day, which will be celebrated on the 15th of August. He urged all to share their myriad ideas and suggestions before the 15th of August, as always, on MyGov. Kargil Vijay Diwas is being observed today across the country to honor the bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla paid tributes to the brave soldiers who had laid down their lives in the defence of the motherland. In a social media post, President Murmu said the unparalleled valour, unwavering resolve and supreme patriotism of the soldiers exemplify the finest traditions of the Indian Armed Forces. In Ladakh, Union Defence Minister Rajnath Singh today led the 27th Kargil Vijay Diwas commemorations at the Kargil War Memorial in Dras, paying homage to the brave hearts of the 1999 Kargil War. The Raksha Mantri laid a wreath at the cenotaph and paid tributes to the soldiers who made the supreme sacrifice during Operation Vijay. Addressing the gathering, Mr. Rajnath Singh said, the Kargil War was not only India's military and diplomatic victory, but also a defining moment when the world witnessed the indomitable courage and valour of Indian soldiers. More from our correspondent.
2: Union Defence Minister Rajnath

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
1: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए, हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं।
1: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने

0: यहां देश का नाम रोशन किया है।
1: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
0: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
1: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
0: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
1: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
0: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
0: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम

0: संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 9 58 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए हैं। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर 4 भारतीय सवार थे, इनमें से 2 भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयी दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डोरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 133वें डोरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालेम को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की

युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल शाम तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। श्रोताओं, इस समय 2:32 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत लहरी। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म हेलो डार्लिंग से। आवाजें हैं जावेद जाफरी, आकृति कक्कर और साथियों की, बोल शब्बीर अहमद के हैं व धुन तैयार की प्रीतम ने।

श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए ना घर के ना घाट के फिल्म का गीत रेमो फर्नांडिस की आवाज़ में मुदस्सर अजीज़ के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया ललित।

श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए जावेद अख्तर की लिखी गीत रचना, जिसे संगीत से सजाया शंकर एहसान लॉय ने। फिल्म है कार्तिक कॉलिंग कार्तिक और आवाजें शंकर महादेवन और एलिसा मेंडोंसा की है।

श्रोताओं आप लीजिए सुनिए विशाल भारद्वाज के संगीत निर्देशन में तैयार गुलजार का लिखा गीत। फिल्म है इश्किया और आवाज है राहत फतेह अली खां की।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए तीन पत्ती फिल्म का गीत। आवाज है नरेश कामत की। इरफान सिद्दीकी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया सलीम सुलेमान ने।

0: श्रोताओं, इसी के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत लहरी अब यहीं समाप्त होता है।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: विविध भारती FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय 3:01 हुए हैं और अब समय हो चला है एल्बम टाइम का। कार्यक्रम में पहले सुनिए सोनू निगम की आवाज़ में एक एल्बम गीत।

श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए सोनू निगम को।

श्रोताओं, ये है 100.9 विविध भारती FM श्री विजयपुरम। और अब समय हो, बता दें आपको, दोपहर के 3:30। और अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम, यूं ही गाते रहो।

नमस्कार श्रोताओं, 100.9 विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम के इस विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि शौर्य, साहस और बलिदान का प्रतीक है। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर हमारे वीर जवानों ने अपने अदम्य साहस से तिरंगे की आन बान और शान को कायम रखा। उनके बलिदान को नमन करते हुए आज का ये कार्यक्रम उन्हीं वीरों को समर्पित है। श्रोताओं, जब इरादे मजबूत हों तो हर मुश्किल रास्ता आसान बन जाता है। साथ चलने का हौसला ही जीत की सबसे बड़ी ताकत होती है।

हमारी पहचान हमारी एकता में है। जब देश की बात आती है तो हर धर्म, हर भाषा और हर प्रदेश एक हो जाता है। वही जज्बा हर भारतीय की सबसे बड़ी ताकत है।

श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो सुन रहे थे। 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं, अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।

0: हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है ये बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई, कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
1: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: समय शाम के 4 बजे हैं। आज की हमारी दूसरी सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिमला में ये रोक रहे हम बांगिंग रेता का लमक तेलगम मीडियम वेव तो 438.6 मीटर है 684 किलो हर्ट्स रमांगेलगी आकाशवाणी श्री विजयपुर मनगी निकोबारी प्रोग्राम तहांगा।

हाय दोस्तों, लम्हे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका आरजे चेतन। पर्यावरण के गुण और विशेषता, ये तो सामान्यकृत या स्थानीय, क्योंकि वे मनुष्य और अन्य जीवों पर प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण की गुणवत्ता एक सामान्य शब्द है जो इसका उल्लेख कर सकता है। हवा और पानी की शुद्धता या प्रदूषण, शोर, खुली जगह तक पहुंच और इमारतों के दृश्य प्रभाव जैसी विभिन्न विशेषताएं और संभावित प्रभाव जो ऐसी विशेषताओं का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। पर्यावरण की स्थिति मानव स्वास्थ्य, कल्याण और जीवन के अन्य पहलुओं का प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए प्रदूषण के माध्यम से, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। उदाहरण के लिए संपत्ति की कीमतों पर प्रभाव पड़ने से, जो बदले में किसी व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि को प्रभावित कर सकती है। पर्यावरणीय गुणवत्ता को एक सार्वजनिक वस्तु माना जाता है जिसका सभी को समान मात्रा में सेवन करना चाहिए। यह दृष्टिकोण इस आधार से शुरू होता है कि निजी संपत्ति के अधिकारों को पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिए परिभाषित नहीं किया जा सकता है, या यदि तकनीकी रूप से व्यवहार्य और या निजी संपत्ति के अधिकारों को परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। कई संशोधित पर्यावरणीय कारक जैसे कि बाहरी वायु प्रदूषण, घरेलू वायु प्रदूषण, पीने के पानी का संदूषण, खतरनाक सामग्रियों के व्यावसायिक जोखिम, सीसा जोखिम और निर्मित

वातावरण जो शारीरिक गतिविधि को हतोत्साहित करते हैं, पुरानी बीमारी के जोखिम और अनुभव को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रदूषित पर्यावरण न सिर्फ गंभीर बीमारियों को जन्म दे रहा है बल्कि जान भी ले रहा है। साथ ही जाने कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए लोग क्या कर सकते हैं। कुछ वक्त पहले आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि घर के अंदर और बाहर होने वाले वायु प्रदूषण के कारण हर साल करीब 70 लाख लोगों की मौत समय से पहले हो जाती है, जिसमें 6 लाख बच्चे शामिल हैं। इस जानकारी के आधार पर ही हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए एक जहर बनता जा रहा है। आज हवा से लेकर पानी, फल, सब्जियां, यहाँ तक कि रोजमर्रा की सभी चीजें प्रदूषित हो गई है और कई तरह की बीमारियों का घर बन गया है। प्रदूषित हवा में सांस लेने से न सिर्फ सांस संबंधी बीमारी होती है बल्कि ये मृत्यु को भी बुलावा देती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। जब वायु में प्रदूषित तत्वों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है तो सांस लेने में परेशानी के अलावा आंखों में जलन और खुजली होने लगती है। आस्थमा के अलावा सांस संबंधी कई बीमारियां पैदा हो जाती है। आज लोग टेंशन, डिप्रेशन, डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के चपेट में आ गए हैं, जिसका जन्मदाता वायु प्रदूषण है। हाल ही में आई एक स्टडी के अनुसार यातायात संबंधी प्रदूषण की वजह से बच्चों के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है और यह कई तरह के मानसिक विकारों को जन्म देता है। वायु के प्रदूषित होने के कई कारण हैं, जिनमें मुख्य है फैक्ट्री और कारखानों से निकलने वाला हवा, SPM यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सीसा और नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि। पर्यावरण को प्रदूषित करने में कूड़ा कचरा भी अहम भूमिका निभाती है। जगह जगह कूड़ा जलाया जाना और फेंकने से कई हानिकारक गैस उत्पन्न होते हैं और स्वच्छ हवा के साथ मिलकर उसे जहरीला बना देता है। जिस तरह स्वस्थ जीवन जीने के लिए साफ हवा की जरूरत होती है, उसी तरह साफ पानी की भी जरूरत होती है। कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन आज यही जल कई गंभीर बीमारियों को जन्म दे रहा है। इसकी वजह है पानी का प्रदूषित होना। फैक्ट्रियों, कारखानों से निकलने वाला कचरा नदियों में बहा दिया जाता है। गंदे नालों से निकलने वाला पानी नदियों में मिलकर उसे प्रदूषित बना देता है। यही प्रदूषित पानी डायरिया, टाइफाइड और अन्य बीमारियों का कारण बनता है। पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार तो कुछ नियम ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन इसके अलावा अपने स्तर पर भी हम कुछ कदम उठाना चाहिए, जैसे कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग डस्टबिन में डालें। फल, सब्जियां, ऐसी चीजें जो रिसाइकिल हो सके उन्हें हरे कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच, पॉलिथीन जैसी चीजें नीले रंग के कूड़ेदान में डालें। घर के अंदर का प्रदूषण कम करने के लिए बहुत काम आएंगे ये टिप्स, तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। अपने वाहनों के समय समय पर प्रदूषण संबंधी जांच करवाएं और सर्विसिंग भी टाइम पर करवाएं। ऐसे सामानों का इस्तेमाल करें जो रीयूजेबल हो, यानी जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। जब भी कमरे या घर से बाहर निकलते सभी लाइट और पंखे बंद कर दे। अगर आसपास ही किसी मार्केट या अन्य जगह पर जाना हो तो कार या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय साइकिल का इस्तेमाल करें या फिर वॉक करके जाएं। गाड़ी, घर या अन्य चीजों की साफ सफाई के लिए खतरनाक केमिकल आधारित उत्पादों की जगह इको फ्रेंडली उत्पाद इस्तेमाल करें। छोटी छोटी ऐसी चीजें कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बचाव, जितना हो उतना ही करंट का इस्तेमाल करना, यूज करने के तुरंत बाद बिजली को बंद करना। परिवार के सभी सदस्य एक बार ही मिलके खाने से कई लाभ है, जैसे जितना कंजम्पशन है उतना ही खाना बनता है, बार बार गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। परिवार के सभी सदस्य मिलके खाएंगे तो डाइनिंग टेबल पर फैमिली बॉन्डिंग भी हो जाता है। अन्य कमरों में लाइट और फैन बंद करें। पानी की बचत करें।

0: वॉश बेसिन में ज्यादा पानी वेस्ट न करिएगा। किचन से सब्जी फल धोने के बाद जो पानी वेस्ट रहता है उसे अपने पौधों में डालें। किचन वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट करें। थोड़ा ही सही, घर पर कुछ न कुछ जरूर उगाएं। हो सका तो कुछ ज्यादा भी उगा सकते हैं, आपके पास अगर जगह और टाइम हो तो। वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो आसानी से उगे उसे भी लगाएं, और इससे आप बार बार आपको दुकान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हरा धनिया उगा सकते हैं, मेथी उगा सकते हैं और पालक भी घर पर ही उगा सकते हैं। टमाटर, बैंगन, टिंडा, ये सब आप घर पर आसानी से उगा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कुछ टिप्स एनवायरमेंटल क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले लम्हे प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत, नमस्कार। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 20वीं कड़ी।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:40 हुए हैं। अब सुनिए आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में यानी शाम 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम में शाम 5 नंजम रपदलई के तहत पुराने फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे व जन धन योजना और कारगिल विजय दिवस पर चर्चाएं होंगी। शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में सुविचार के साथ बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा। कारगिल विजय दिवस पर चर्चा होगी तथा रजनीकांतो सेन की जन्मतिथि पर जानकारी प्राप्त करेंगे आप। संध्या 6 सुनिए संगीत संगनी कार्यक्रम। धरती के गीत कार्यक्रम में 6:30 पर आप सुनेंगे गोवा के लोकगीत। 6:45 पर देशगान कार्यक्रम। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं का समय रहेगा। 7:20 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। संध्या 7:30 पर युवानी के तहत आप सुनेंगे कारगिल विजय दिवस पर विशेष कार्यक्रम शौर्य की ओर, शौर्य की अमर गाथा और उसके बाद मैंग्रोव परिस्थिति के तंत्र के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर चर्चा होगी। रात्रि 8 चित्रपट संगीत कार्यक्रम। 8:30 पर रोजगार समाचार व गौरवगान कार्यक्रम। रात्रि 10 सुनिए विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8:45 पर समाचार संध्या, 9 न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम रेडियोस्कोप व रात 10 रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के कार्यक्रम में विदुषी वर्षा अग्रवाल का संतूर वादन होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आपने सुना आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में और अब कल के कार्यक्रमों पर एक नज़र। हमारी पहली सभा आरंभ होगी

कल प्रातः 5:25 पर, 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति रस का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। सवेरे 5:55 पर एग्री टिप्स कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा धान की कीट। 6:10 पर जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा जुदाई शीर्षक पर। सवेरे 6:30 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस गान की 312वीं कड़ी। समाचार वार्ता का समय रहेगा 6:40 पर। सुबह 6:50 पर मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण। सवेरे 7:15 पर आप सुनेंगे देश रागनी कार्यक्रम। ठीक इसी समय सुनिए विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम। सुबह 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह। 9:00 तराने सुहाने कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 9:30 पर अली अहमद हुसैन व साथी का शहनाई वादन होगा। सवेरे 10:00 सुनिए गीत गाता चल कार्यक्रम। दिन के 11:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1337वीं कड़ी। एक ही कलाकार कार्यक्रम में कल दिन के 11:30 पर आप KS चित्रा के गाए कुछ गाने सुनेंगे। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम में गाना लहरी के तहत एक ही फिल्म के गाने सुनवाए जाएंगे। मलयालम कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर कुछ फिल्मी गाने आप सुनेंगे व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर चर्चा होगी। दोपहर 1:10 पर समूहगान शिक्षा का कार्यक्रम होगा आओ हिलमिल गाएं। 1:30 पर सुने कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 3:30 पर सुनिए कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। दूसरी सभा आरंभ होगी 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में गायक होंगे घनश्याम वासवनी। तमिल कार्यक्रम में 5:00 तोल्लुमिसई अरुवि के तहत फास्ट बीट के गाने सुनवाए जाएंगे। 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में सुविचार के साथ आधुनिक गान होगा। 6:00 कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर सुभाष पालवे से की गई बातचीत का विषय रहेगा पशुओं में लिवर फ्लू। 6:30 पर पॉप मसाला। 7:20 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 7:30 पर युवानी के तहत आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यादें और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की पुण्यतिथि पर चर्चा होगी। रात्रि 8:15 पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम। 8:30 पर रोजगार समाचार और गौरवगान कार्यक्रम। रात्रि 10:00 विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। तो श्रोताओं अभी आप आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे।

इस समय शाम के 4:45 हुए हैं श्रोताओं, और अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं हम बच्चे हिंदुस्तान के फिल्म के गीत के साथ। आवाज़ें दी हैं अनुप जलोटा और साथियों ने, वो बोल सनम गोरखपुरी के हैं और संगीत है जमीर बिकानेरी का।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोता, इस समय शाम के 5 बजे हैं और अब समय है तमिल कार्यक्रम का।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली निलयम वळंगुम तमिळ अमुदम वणक्कम नेयर्गले।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बांग्ला कार्यक्रम। इस समय संध्या के 6 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम संगीत संगिनी।

संगीत संगनी सुनने वाले सभी सखियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। सखियों बताइए कैसे हैं आप? तो चलिए हमसे जुड़ने के लिए और अपने फरमाइशी गीतों को सुनने के लिए आप हमें इसी वक्त व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारे नंबर्स हैं 9474234000। और एक बार ध्यान दीजिएगा कि मैसेज करते वक्त अपना नाम पता फिल्म का नाम अवश्य भेजें। तो चलिए सखियों आगाज करते हैं प्रोग्राम का और सबसे पहले सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा नगमा जिसकी फरमाइश की है हैवलॉक से अनामिका जी ने। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत।

जी हाँ दो सखियों, एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आपने सुना जो था फिल्म सत्ते पे सतासी। तो चलिए अगला मैसेज ले रहे हैं कैम्बल बे से नीलिमा जी का, और इनकी फरमाइश है सातवां आसमान फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा नगमा सुनाने के लिए। तो चलिए सुनते हैं नीलिमा जी की फरमाइश पर ये गीत।

तो सखियो, इस वक्त आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम संगीत संगिनी, और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर 9474234000, 9474234000। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं अगला मैसेज जो आया है बेंगलुरु से, और फरमाइशी श्रोता है फिरदौस, और इन्होंने चुना है मोहब्बते फिल्म का एक प्यारा सा नगमा। तो चलिए फिरदौस की पसंद पर आइए सुनते हैं ये गीत।

सखियों, अगला मैसेज हम ले रही हैं सुप्रिया, लिपिका और रीमा जी का, और इन्होंने चुना है जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना।

सखियों, अगला फरमाइशी श्रोता है मायाबंदर से, शाइनी और युवा, और इनकी फरमाइश है दिल है कि मानता नहीं फिल्म का, दिल है कि मानता नहीं गाना सुनाने के लिए।

तो सखियों, और अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। अब अपने दोस्त शाहिना को दीजिए इजाजत। नमस्कार, अगले रविवार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम के कार्यक्रमों के साथ।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, धरती के गीत कार्यक्रम में अब प्रस्तुत है गोवा के लोकगीत।
1: हरियाली से भरा मनोरम प्रदेश, धान के खेत, सुपारी के बागों की छटा देखते ही बनती है। चोटियां, नीले नद नाले, घाटियों से भरा सुहावना प्रदेश है गोवा।
2: लेकिन यहाँ का सच्चा वैभव यहाँ के मंदिरों और गिरजाघरों में है। वे पूजा स्थल ही नहीं है बल्कि यहाँ की संस्कृति के केंद्र हैं।
1: गोवा के संगीत, नृत्य और नाट्य उनसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं से स्फूर्ति पाते रहे हैं। सुर, ताल और लय गोवा के जनमानस में रक्तवत हैं।
2: संस्कारों के संदर्भ में तीज त्योहार, कोई कामकाज अथवा भजन पूजन सब ताल और सुर के साथ चलते हैं। इस भूमि में भारतीय संगीत के अखिल भारतीय ख्याति के संगीतकार हुए हैं और आज भी हैं।
1: पाश्चात्य संगीत के बड़े बड़े संगीतकार भी यहाँ हुए हैं, किंतु उनका उद्गम स्थान यहाँ का लोक संगीत है। ये लोक संगीत मूल में भारतीय संगीत है, साथ ही मूल संगीत पर पाश्चात्य संगीत के संस्कारों की छाप है,
2: इसीलिए उसका रूप निराला बना। उसमें पूर्व और पश्चिम का अपूर्व संगम हुआ है।
1: कोई भी सामुदायिक शुभ मंगल कार्य हो, तीज त्योहार हो, यहाँ के लोग देवता का नमन कर विग्रहों का आवाहन करने के बाद उनकी शुरुआत करते हैं।

0: प्रकृति जहां अधिष्ठात्री है, जहां विकृति का नाम नहीं, वो है गोवा प्रदेश। गोवा भारत के पश्चिम में स्थित है। कोंकण के किनारे ये मनोरम प्रदेश शोभा देता है। तेरेखोल, मांडवी, गोवा, कामसो, आखंदे, आद्यशी, जोवारी, छपोरा, तलपण जैसी कई नदियां यहाँ हैं।
1: गोवा में 3 जलप्रपात हैं, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है दूध सागर प्रपात। इसकी ऊंचाई 390 फुट है।
0: गोवा प्रदेश का क्षेत्रफल 3813 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी पणजी है। गोवा की जनसंख्या लगभग 8,60,000 है।
1: गोवा को गोमांतक भी कहा जाता है। यहाँ मराठी, कोंकणी और गुजराती अधिकतर बोली जाती है। यहाँ के प्रमुख खाद्य उत्पादन हैं चावल, मूंगफली, बाजरा, मकई, गन्ना, नारियल, अनानास, आम और काजू।
0: पूरे गोवा प्रदेश के 1/4 अंश में वन संपदा है। लोहा, सिलिका, मैंगनीज जैसी धातुओं के निर्यात के कारण करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा गोवा को प्राप्त होती है।
1: सुवारी एक वाद्य मेल है। ताल और लय दोनों दृष्टियों से ये प्यारा है। ये संगीत प्रकार बहुत ही पुराना है और सच्चा गोमांतकीय है। शिंगा उत्सव में अक्सर इसे सुनाया जाता है। विलंबित और द्रुत दोनों लयों में ये गाया जाता है। शिंगे में नर्तकों का झुंड गाता और डिपरी बजाते नाचता है।

0: यहाँ के लोकगीत जैसे पुरुषों के हैं वैसे स्त्रियों के भी हैं। उनमें होवी प्रमुख है। चक्की पीसते समय गाए जाने वाले होवियों से लेकर ब्याह आदि के अवसरों तक किसी भी प्रसंग में होवी गाए जा सकते हैं।
1: दूसरा लोकप्रिय प्रकार है हुगड़ी। हुगड़ी वो गीत है जिसे नाचते हुए तालियां बजाते हुए गाया जाता है।
2: नेसली कांचन साड़ी।

0: तीसरा प्रकार है ढालू। ये विशेष प्रकार के त्योहारों से जुड़ा है। चांदनी रात को तुलसी आंगन में गाया जाने वाला स्त्रियों का वृंद गीत है।
1: होवी की लय धीमी होती है, होगड़ी की द्रुत, और ढालो धीमी धीमी लय में चलता है।
2: दाते मनु अपोयाम से लक्ष्मी माए,
3: दाते मनु अपोयाम से लक्ष्मी माए,
2: दाते मनु नितानुल से।

0: 4 वर्ग किलोमीटर में फैला पणजी नगर मनमोहक मांडवी नदी के बाएं तट पर स्थित है। मांडवी नदी को देखने पर ऐसा लगता है मानो मरकत की वेदी पर हीरे का पानी रखा गया हो और प्रकृति देवी ने शोभा निहारने के लिए एक दर्पण रचा हो।
1: मनमोहक बागों के बीच बसा ये नगर अपनी भवन निर्माण कला के कारण बाहर से आने वाले यात्रियों को मुग्ध कर देता है।
0: 16वीं सदी से पहले गोवा मछेरों का एक छोटा सा गांव था। गोवा नगर एल्टिनहो नाम की पहाड़ी की चारों ओर

0: व्यवस्था है। पहाड़ी पर खड़े होकर नारियल के पेड़ों की कतार देखने पर दर्शक का मन प्रसन्नता और शांति से भर जाता है। जिस स्थान पर मांडवी नदी अरब सागर में मिलती है, वहां अगवाद और रिस मागोस के मशहूर ऐतिहासिक किले हैं।
1: गोवा के निवासी जब पिकनिक मनाने की चाह करते हैं, तब वे नगर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दौड़ मंडल जाते हैं। ये प्रकृति के वैभवमयी छटा से भरपूर है।
0: पणजी के बीच आर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन का भव्य गिरजाघर है। ये गोवा का आकर्षक स्थान है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर महालक्ष्मी और हनुमान जी के मंदिर हैं। एक मस्जिद भी है। इस प्रकार पणजी नगर धर्मनिरपेक्षता का आदर्श हमारे सामने रखता है।

श्रोताओं, धरती के गीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गोवा के लोकगीत। इस समय संध्या के 6:45 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए कुछ देश गान।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7 बजे हैं।

श्रोताओं, आज संध्या 7:20 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युवानी के तहत आज संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे कारगिल विजय दिवस पर विशेष कार्यक्रम शौर्य की अमर गाथा, और उसके बाद सुनिए मैंग्रोव परिस्थितियां की तंत्र के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर चर्चा।

कल सवेरे 5:55 पर एग्री टिप्स कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा धान की कीट। सवेरे 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा जुदाई शीर्षक पर। कल सुबह 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह की आवाज़ों में चंद खूबसूरत गज़लें। सुबह 9:00 तराने सुहाने कार्यक्रम। एक ही कलाकार कार्यक्रम में कल दिन के 11:30 पर आप के एस चित्रा के गाए कुछ गाने सुन पाएंगे। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम में गाना लहरी के तहत एक ही फिल्म से गाने आप सुनेंगे। दोपहर 1:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

कल शाम 4:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में गायक होंगे घनश्याम वासवानी। तमिल कार्यक्रम में कल शाम 5 बजे तोल्लुम इसी अरुवी के तहत फास्ट बीट के गाने सुनवाए जाएंगे।

0: 89.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस ब्रेक के बाद।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: दी, ये देख कैसे।
5: हैप्पी बर्थडे भाई।
4: दीका,
6: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
7: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
8: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
9: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
7: आई नो ना।
9: आरबीआई कहता है,
10: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

कल संध्या 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर सुभाष पालवे से की गई बातचीत का विषय रहेगा पशुओं में लिवर फ्लू। कल संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पॉप मसाला।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100

मुख्य समाचार। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। डिगलीपुर में एरल बे गांधीनगर स्मिथ द्वीप को जोड़ने वाली 50 यात्री क्षमता वाली चार्टर्ड फेरी सेवा आज से शुरू। और श्री विजयपुरम में कल से सर्किट बैठक का आयोजन किया जाएगा।

0: सांध्य समाचारों के साथ मैं टी जयश्री। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। यह विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत रक्षा निर्यात राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से यह विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का

0: पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बने गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की।
1: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है कि उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है।
0: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, चार्टर्ड फेरी सेवा और सर्किट बैठक। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। द्वीप समूह में फेरी सेवाओं की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए जहाजरानी सेवा निदेशालय ने 3 ऑपरेटरों के साथ हाल ही में निष्पादित चार्टरिंग समझौते के तहत डिगलीपुर में एक चार्टर्ड 50 यात्री क्षमता वाले फेरी सेवा का संचालन शुरू कर दिया है। एरियल बे गांधीनगर स्मिथ द्वीप को जोड़ने वाली यह चार्टर्ड फेरी सेवा आज से शुरू हो गई है। एरियल बे जेट्टी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान डिगलीपुर के सहायक आयुक्त संतोष प्रकाश ने इस सेवा को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पंचायती राज संस्था के सदस्यों और जहाजरानी सेवा के उपनिदेशक जे गोपीनाथ भी उपस्थित थे। राष्ट्र आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण निछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि कारगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। श्री विजयपुरम में कल से 7 अगस्त तक सर्किट बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक के दौरान न्यायिक सदस्य उर्मिता दत्ता और प्रशासनिक सदस्य सुचित कुमार दास मामलों की सुनवाई करेंगे। इस अवधि के दौरान नए आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। जिन विभागों के मामले लंबित हैं, वे संबंधित मामलों के दस्तावेजों के साथ सरकारी वकील या पैनल अधिवक्ताओं से संपर्क करें। विभाग अध्यक्षों से भी अपने नोडल अधिकारियों को सुनवाई के दिन आवश्यक दस्तावेजों के साथ अधिकरण में उपस्थित रहने का निर्देश देने को कहा गया है। कला एवं संस्कृति विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता जारी करने के लिए द्वीप समूह के पंजीकृत सांस्कृतिक संगठनों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रत्येक पात्र संगठन को ₹25,000 की अनुदान सहायता दी जाएगी। इसके लिए सांस्कृतिक संगठनों का एक पंजीकृत कार्यालय, कला संस्कृति, राष्ट्रीय एकीकरण, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना और न्यूनतम एक वर्ष की अवधि से सक्रिय होना अनिवार्य है। इच्छुक संगठन अपने आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ 18 अगस्त तक कला एवं संस्कृति निदेशक के पते पर जमा कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप प्रशासन और विभाग के वेबसाइट से डाउनलोड या कला एवं संस्कृति निदेशालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। डिगलीपुर में एरियल बे गांधीनगर स्मिथ द्वीप को जोड़ने वाली 50 यात्री क्षमता वाली चार्टर्ड फेरी सेवा आज से शुरू। और श्री विजयपुरम में कल से सर्किट बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी? नहीं झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होगी। ये थी मौसम की जानकारी। और अब सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी रानी लक्ष्मी मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए 27 जुलाई को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और 28 जुलाई को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से चलकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कैंबल बे लिटिल अंडमान की यात्रा पर 28 तारीख को सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा उसी दिन रात्रि 9 बजे लिटिल अंडमान से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान होते हुए कानिकुबार के लिए 27 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और 28 तारीख को शाम 4 बजे कानिकुबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। नालंदा जहाज नानकौरी होते हुए कैंबल बे जाने के लिए 28 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा व 30 तारीख को सुबह 8 बजे कैंबल बे से चलकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बम्बुका स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत जाने के लिए कल सोमवार 27 तारीख को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा व कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी हटबे शहीद द्वीप के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा व कल ही सुबह 9 बजे स्वराज द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप के लिए कल दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा, दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए रवाना होगा व दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराजद्वीप जाने के लिए कल सोमवार 27 तारीख को दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा, दोपहर बाद 2 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप जाएगा व दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप के लिए कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी जॉली बॉय स्वराजद्वीप जाने के लिए कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और अगले दिन प्रातः 5:30 पर स्वराजद्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। जलियानों का यात्रा कार्यक्रम समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:20 हुए हैं श्रोताओं, और अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं परिंदा फिल्म के गीत के साथ, जिस संवेद स्वरों में बोल खुर्शीद हलौरी के, संगीत आर डी बर्मन का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए युवाणी कार्यक्रम।

युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त लता राज नंदिनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष आज ही के दिन यानी 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना और इनके संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। मैंग्रोव समुद्र और भूमि के बीच प्राकृतिक सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। ये तटीय क्षेत्रों को चक्रवात, तूफान और समुद्री लहरों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही ये अनेक मछलियों, पक्षियों और अन्य जीव जंतुओं के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करते हैं तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी सहायक हैं। भारत के सुंदरबन सहित कई तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव जैव विविधता के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। आइए इस दिवस पर हम मैंग्रोव वनों को बचाने और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने का संकल्प लें।

तो दोस्तों, ये तो रही आज के दिन की कुछ खास बातें, और अब आप सभी को इंतजार होगा आज के कार्यक्रम का। तो दोस्तों, आज हम आप सभी युवा दोस्तों के लिए लेकर आए हैं कारगिल विजय दिवस पर विशेष कार्यक्रम शौर्य की अमर गाथा। छब्बीस जुलाई भारत के इतिहास का वह गौरवशाली दिन जब देश अपने उन वीर सपूतों को श्रद्धापूर्वक याद करता है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अदम्य साहस और अटूट संकल्प का परिचय दिया। यही दिन हमें याद दिलाता है कि तिरंगे की शान केवल एक ध्वज में नहीं बल्कि उन अनगिनत बलिदानों में बसती है जिन्होंने इसकी आन बान और शान को सदैव ऊंचा रखा। कारगिल विजय दिवस केवल एक सैन्य विजय का उत्सव नहीं बल्कि साहस, कर्तव्य, देशभक्ति और बलिदान को नमन करने का अवसर है। यह दिन उन परिवारों की भावनाओं को भी समझने का दिन है जिन्होंने अपने प्रियजनों को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। कारगिल की बर्फीली चोटियों से लेकर देश के हर कोने तक आज भी एक ही भावना गूंजती है, हमारे वीर जवान अमर रहें और भारत सदैव सुरक्षित एवं गौरवान्वित रहे।

वर्ष 1999 में कारगिल क्षेत्र की ऊंची पर्वतीय चोटियों पर एक गंभीर सैन्य संघर्ष हुआ। भारतीय सेना ने इन रणनीतिक ऊंचाइयों पर हुए अतिक्रमण का सामना करते हुए उन्हें पुनः सुरक्षित करने के लिए अभियान चलाया, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना गया। अत्यंत कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, ऊंचाइयों और चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच भारतीय सैनिकों ने असाधारण साहस के साथ अपने अभियान को आगे बढ़ाया। एक एक चोटी को वापस हासिल करने के लिए हमारे जवानों ने अदम्य धैर्य और वीरता का परिचय दिया। यह संघर्ष कई सप्ताह तक चला और अंततः 26 जुलाई सन 1999 को भारत ने अपनी महत्वपूर्ण सैन्य विजय प्राप्त की। तभी से 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमें उस कठिन दौर की याद दिलाता है जब देश की सीमाओं की रक्षा के लिए भारतीय सशस्त्र बलों ने अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।

0: कारगिल की विजय के पीछे केवल एक सैन्य अभियान की सफलता नहीं, बल्कि हमारे वीर सैनिकों का अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान था। कठिन परिस्थितियों में लड़ते हुए अनेक जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी और देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनके परिवारों ने भी इस बलिदान की कीमत अपने हृदय पर सहन की। किसी माँ ने अपना बेटा खोया, किसी पत्नी ने अपना जीवन साथी, किसी बच्चे ने अपने पिता को, लेकिन राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण कभी कम नहीं हुआ। भारतीय सेना के साथ साथ हमारी पूरी सशस्त्र सेनाओं की वीरता हमें यह विश्वास दिलाती है कि देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। कारगिल के वीर हमें सिखाते हैं कि साहस केवल युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि कर्तव्य के प्रति अडिग रहने में भी है। आज हम उन सभी वीर जवानों को नमन करते हैं जिनकी वीरता और बलिदान भारत के इतिहास में सदैव अमर रहेगा।
1: कर चले हम फिदा जान तन।

कारगिल विजय दिवस हमें केवल अतीत की एक गौरव गाथा नहीं सुनाता, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। यह हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता और सुरक्षा की कीमत बहुत बड़ी होती है और इसके पीछे हमारे सैनिकों का साहस, अनुशासन और त्याग होता है। आज जब हम अपने घरों में सुरक्षित जीवन जीते हैं, अपने सपने देखते हैं और अपने भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, तब हमें उन वीर जवानों को अवश्य याद करना चाहिए जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना आज समर्पित कर दिया। आइए इस कारगिल विजय दिवस पर हम अपने वीर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करें और उनके परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त करें। उनके बलिदानों को याद रखना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। कारगिल की चोटियों पर लहराता तिरंगा हमें सदैव यह प्रेरणा देता रहेगा कि भारत की एकता, अखंडता और सम्मान सर्वोपरि है। वीर जवानों को शत शत नमन। जय हिंद।

तो दोस्तों, आप कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष पर सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम शौर्य की अमर गाथा। और इसी के साथ आज का युववाणी का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल इसी समय हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अपनी रेडियो दोस्त लताराज नंदिनी को इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवाणी कार्यक्रम। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवाणी कार्यक्रम। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं और अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए अमर प्रेम फिल्म का गाना किशोर कुमार के स्वर में, बोल आनंद बख्शी के संगीत R.D. बर्मन का।
1: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए।

0: मुकेश की आवाज़ में अब सुनिए आनंद फिल्म का गीत, गीतकार गुलजार, संगीतकार सलील चौधरी।
1: मैंने

परवरदिगारे आलम मोहताज है तेरे हम तेरे नाम के सहारे बेदम में आएगा दम परवरदिगारे आलम।

श्रोताओं, कल सवेरे 6:15 पर आप सुनेंगे इंद्रधनुष कार्यक्रम में जुदाई शीर्षक पर कुछ गीत। कल सवेरे 7:15 पर देशरागनी कार्यक्रम होगा और ठीक इसी समय आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं और अब सुनिए रोजगार समाचार। पर्यावरण एवं वन विभाग के अंतर्गत APCCF, CRZ, FC, नोडल अधिकारी FCA एवं MS, अंडमान एवं निकोबार तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण अंडमान निकोबार CZMA द्वारा संविदा आधार पर कंसल्टेंट के 2 पदों पर योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 40,000 का समेकित मानदेय प्रदान किया जाएगा। नियुक्ति का स्थान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह होगा। शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फॉरेस्ट्री, पर्यावरण विज्ञान, मैरीन बायोलॉजी, ओशन स्टडीज अथवा समकक्ष विषय में स्थानक डिग्री होना आवश्यक है। साथ ही पर्यावरण अध्ययन, इम्पैक्ट असेसमेंट, इकोलॉजी, मेरीन बायोलॉजी, रिस्क एनालिसिस अथवा पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित कार्य अनुभव तथा MS ऑफिस का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन 100 अंकों की वेटेज आधारित मूल्यांकन प्रणाली तथा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। केवल शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र अंडमान एवं निकोबार वन विभाग तथा अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की वेबसाइट https://forest.and.nic.in एवं https://andaman.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रतियों सहित कार्यालय APCCF, CRZFC, वन सदन हेडो श्री विजयपुरम में केवल ऑफलाइन स्वयं उपस्थित होकर जमा करना होगा। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 29 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए विभाग से संपर्क किया जा सकता है। और इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
2: Nexa.
3: Hey, still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
0: श्रोताओं और अब सुनिए गौरवगान कार्यक्रम के तहत कुछ देशभक्ति गीत।

छह मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक

0: के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
1: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर्स पे मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
2: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल विजय दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
3: भारत पाकिस्तान

0: के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है। और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
2: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंजीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
3: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वॉश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से ओडिशा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
4: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और बाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे।

परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा

0: सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi announces setting up of high-powered task force on examination reforms to be headed by technology expert Nandan Nilekani. New law to be introduced in Parliament tomorrow to deal with examination irregularities. Union Minister Prahlad Joshi assumes charge of Education Ministry. Nation salutes indomitable courage and supreme sacrifice of its soldiers on Kargil Vijay Divas. Prime Minister Modi urges citizens to honor Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India. Defense Minister Rajnath Singh reiterates no talks with Islamabad other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In weightlifting, India's Mirabai Chanu wins gold in the women's 48-kilogram event. And Rishikant Singh Chanambang bags silver in the men's 60-kilogram category at Commonwealth Games. And in men's cricket, India beat Zimbabwe by 35 runs in the third T20 match to win the series 3-0 in Harare. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB director Tapan Deka, former ISRO chairman S. Somanath, IIT Chennai director V. Kamakoti, besides former education secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities. Mr. Modi reaffirmed the government's commitment to protecting the integrity of competitive examinations and safeguarding the future of millions of students.
2: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
1: Union Minister Prahlad Joshi today assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Later, speaking to media, Union Minister Prahlad Joshi expressed gratitude to Prime Minister Modi for entrusting him with this responsibility.
3: पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है।
4: आई एम रिव्यूइंग ऑल द डिटेल्स एंड द डिसीजंस दैट नीड टू बी टेकन। आई हैव बीन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर मिनिस्ट्री। वी हैड कंटीन्यूअस मीटिंग टुडे। दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर मी। आई हैव टेकन चार्ज टुडे एंड हेल्ड डिटेल्ड डिस्कशंस विद द सीनियर ऑफिसर्स। इट इज अ वेरी बिग डिपार्टमेंट, सो आई विल स्पीक टू यू इन डिटेल आफ्टर आई हैव अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली।
3: बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूंगा।
1: Prime Minister Modi said that the youth of the country have a crucial role in building a Viksit Bharat. He said they are not only the driving force behind a developed India, but also its greatest beneficiaries. Addressing participants of the Viksit Vibrant Village program through video conferencing, Mr. Modi said developed villages are the foundation of a Viksit Bharat and that young people have a vital role in achieving this vision. He highlighted that despite facing challenges, residents of border villages have always maintained an unwavering spirit of patriotism.
5: हमारे सीमावर्ती गांवों में

0: नमस्कार, अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा के आज के इस गरिमामय समारोह में हम भारत की प्रथम महिला संतूर वादिका विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल जी, जो कि सूफियाना घराने की एकमात्र ऐसी भारतीय महिला कलाकार हैं जिन्हें संतूर वादन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, का संतूर वादन प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
1: नमस्कार। In today's prestigious program of the Akhil Bharatiya Ravivasariya Sangeet Sabha, we are going to present a santur recital by India's first female santur maestro, Vidushi Dr. Varsha Agrawal, who is the only Indian female artist of the Sufiana Gharana to achieve international acclaim in santur playing.
0: Dr. Varsha ji ne gayan aur tabla ki shiksha matra 6 varsh ki ayu mein prarambh ki thi aur aage chalkar prakhyat tabla vadak पंडित ललित महंत जी से संगीत का गहन मार्गदर्शन प्राप्त किया। आप प्रख्यात संतूर वादक पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी जी की गंडाबद्ध शिष्या हैं। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार होने के साथ साथ विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों में संतूर वादन हेतु आमंत्रित की जाने वाली देश की पहली महिला संतूर वादिका का गौरव भी रखती हैं।
1: Dr. Varsha ji began her training in vocal music and tabla at the mere age of 6 and later received profound musical guidance from the renowned tabla player Pandit Lalit Mahant ji. She is a Gandaband disciple of the eminent santur maestro Padma Shri Pandit Bhajan Sopori ji. Along with being a top grade artist of All India Radio and Doordarshan, she also holds the proud distinction of being the first female santur player of the country to be invited by the Ministry of External Affairs for santur concerts abroad.
0: वर्तमान में शासकीय कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय उज्जैन में संगीत प्राध्यापिका के रूप में सेवारत डॉक्टर वर्षा जी को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा फर्स्ट लेडी अवार्ड, मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित शिखर सम्मान सहित कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है।
1: Currently serving as a professor of music at the Government Girls PG College of Excellency Ujjain, Dr. Varsha ji has been honored with several national and international accolades, including the First Lady Award by the Honorable President of India and MP Government Shikhar Samman also.
0: Vidushi Varsha Agrawal, भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत का एक ऐसा ही प्रतिष्ठित नाम है। संतूर के शततंत्री तारों पर उनकी उंगलियां जब थिरकती है तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। अपनी अनवरत साधना, लयकारी पर अद्भुत पकड़ और प्रतिष्ठित मंचों पर दी गई अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्होंने संतूर वादन के क्षेत्र में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: विदुषी वर्षा अग्रवाल इज वन सच एमिनेंट नेम इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। व्हेन हर फिंगर्स डांस ऑन द 100 स्ट्रिंग्स ऑफ संतूर, the listeners are left spellbound. Through her relentless dedication, remarkable command over rhythm and melodious performances on prestigious stages, she has left an indelible mark in the field of santur playing.
0: Vidushi Dr. Varsha Agrawal apni santur vadan ki shuruaat raag jhinjhoti se kar rahi hain. Isme ve aalap, jod aur jhala ki pashchat vilambit gat jo trital mein hai, madhya gat ek taal mein और द्रुतगत तीन ताल में प्रस्तुत करेंगी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित हितेंद्र दीक्षित।
1: विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल इज बिगनिंग हर संतूर रिसाइटल विद राग झिंझोटी। इन दिस आफ्टर द आलाप, जोड़ एंड झाला, शी विल प्रेजेंट अ विलंबित गत इन तीन ताल, अ मध्य गत इन एक ताल एंड अ द्रुतगत इन तीन ताल। अकंपनिंग हर ऑन द तबला इज पंडित हितेंद्र दीक्षित।

राग झंझोटी में अभी आपने सुना विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल का संतूर वादन। विदुषी वर्षा अग्रवाल अब प्रस्तुत करने जा रही है राग किरवानी। इसमें वे आलाप के पश्चात मध्यगत जो रूपक ताल में और द्रुतगत तीन ताल में प्रस्तुत करेंगी।

0: ये था विदुषी वर्षा अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत राग किरवानी। विदुषी वर्षा अग्रवाल अपने कार्यक्रम का समापन एक मिश्र राग आधारित मधुर धुन से कर रही हैं।
1: दैट वॉज राग किरवानी प्रेजेंटेड बाय विदुषी वर्षा अग्रवाल। विदुषी वर्षा अग्रवाल इज कंक्लूडिंग हर परफॉर्मेंस विद अ मेलोडियस धुन बेस्ड ऑन अ मिश्र राग।

0: विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत ये थी मिश्र राग पर आधारित मधुर धुन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित हितेंद्र दीक्षित। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दैट वॉज अ मेलोडियस धुन बेस्ड ऑन अ मिश्र राग प्रेजेंटेड बाय विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल। Accompanying her on the tabla was Pandit Hitendra Dikshit. This program was presentation by All India Radio, Indore. With this, today's Akhil Bharatiya Ravivasariya Sangeet Sabha concludes.
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब सुनिए मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होगी। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 11:01 हुए हैं। अब आज की हमारी दूसरी सभा यहीं पर समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 5वीं तिथि, तदनुसार 27 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:28 और 36 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की पहली स्थानीय प्रसारण सेवा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।